FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। स्टूडियो घड़ी में समय प्रातः

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से, और समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान

0: और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा धर्म है। ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनते हैं वंदनवार में भक्ति गीत।

यह है विविध भारती झरोका में लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 269 6:35 से। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज आप सुनेंगे इसका तीसरा भाग, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल। समय होगा 6:45 से। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिए, हम है राही प्यार के। आठ बजकर 15 से और दिन में 2 से त्रिवेणी सुनिएगा। चित्रलोक का समय होगा सुबह 8:30 से और रात 8:15 से। सुबह व रात्रि 9:30 से आज के फनकार आज केंद्रित होगा गीतकार शकील बदायूनी पर।

10 बजे से पिटारा में उजाले उनकी यादों के फिल्म निर्देशक, लेखिका, नाटककार पद्म भूषण सई पराजपई से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग आज आप सुनेंगे।

11 बजे से रंग तरंग, 12:05 से यादों की महफिल। एक बजे से वक्त होगा सुरीला सफर का, 2:30 से सदाबहार नगमे।

दिन में 3 बजे से सखियों का कार्यक्रम सखी सहेली सुनिएगा। चार बजे से वक्त होगा पिटारा में सेहत नामा का। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे। पांच बजे से छाया गीत, 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6:35 से वक्त होगा संध्या रंजन में भक्ति गीतों का। 7 बजे से फौजी साथियों के लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम जयमाला। 7:45 से इंद्रधनुष। रात 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल। इसमें आप सुनेंगे हास्य नाटिका कैसे कैसे दोस्त, लेखक सुरेंद्र कुमार तिवारी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। नौ बजे से लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत और 10:30 से वक्त होगा ढलती जाए रात का। झरोका में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

बाली सुग्रीव युद्ध हुआ। बलशाली बाली के सामने सुग्रीव टिक नहीं सका। वो भागकर श्रीराम की शरण जाता है। उन्होंने उसको उत्साहित कर दूसरी बार फूलों की माला पहनाकर भेजा ताकि समान दिखने वाले दोनों भाइयों में उसे पहचाना जा सके। दूर पेड़ की आड़ से श्रीराम बाली की छाती में वाण मारकर उसका वध कर देते हैं। अपने अंतिम क्षणों में श्री राम को समीप पाकर वो प्रश्न करता है, हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, फिर मैं वैरी और सुग्रीव आपका प्यारा क्यों कर हो गया? श्री राम का उत्तर है, हे मूर्ख, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधु और कन्या, ये चारों एक समान होती हैं। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को मारने से कोई पाप नहीं होता।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का भाग 269।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रृंखला वर्षा चौमासा की आज की यह है तीसरी कड़ी। शुभा मुद्गल हमारी जानी पहचानी प्रख्यात गायिका स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार। और आपने मेरी तारीफ तो कर दी, पर मुझे भी ये कहना है कि संगीत सरिता एक बहुत बहुत वर्षों से मैं भी सुनती आई हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुने, कब मेरे लिए विशेष उपलब्धि है कि आज मुझे इसमें प्रस्तुति करने का अवसर दिया जा रहा है।
0: जी तो बात चल रही थी मल्हार की, शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ, और इसके बाद आज आपने कौन सी बंदिश चुनी है, किस राग को चुना है, सब कुछ बताइए।
1: मैंने आज के लिए राग गौड़ मल्हार चुना।

0: जी, बहुत लोकप्रिय मल्हार का प्रकार है, प्राचीन भी है, और इसे विभिन्न प्रकारों से गाया जाता है, यानी खूब मतभेद है इसके विषय में
1: अच्छा,
0: कि बिलावल थाट का है, खमाज थाट का है, इत्यादि इत्यादि। कोमल गंधार लगा के गाना चाहिए, कैसे गाना है, दोनों निषाद लगने चाहिए कि नहीं, ये सब बहुत अलग अलग चर्चा है। लेकिन मैंने जिन दो बंदिशों को प्रस्तुत करने का मन बनाया है उनके विषय में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत की बंदिशें हैं वो हमेशा ही प्राचीन होती हैं, और जैसे ही किसी भी प्रकार का शास्त्रीय संगीत हो तो वो एकदम 5,000 साल से कम का नहीं होता। लेकिन सत्य तो ये है कि शास्त्रीय संगीत सीखने वाले लोग तो आज भी हैं, और रचना करने वाले लोग भी
1: भी आज
0: आज
1: हैं।
0: हैं, प्रस्तुत हैं हमारे
1: बिल्कुल,
0: बीच में।
1: मतलब वो धारा जो रचना की है वो अविरल है, बहती जा रही है और वो विस्तृत भी होती जा रही है।
0: बिल्कुल, और उसमें अपना अपना योगदान समर्पित रूप से लोग करते जाते हैं।
1: जी
0: तो ये जो दोनों रचनाएं चुनी हैं, एक मैंने झपताल की रचना चुनी है और एक मैंने तीन ताल की रचना चुनी है।
1: अर्थात ये वर्षा ऋतु से संबंधित ही बंदिशें होंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गौड़ मल्हार में निबद्ध और वर्षा संबंधी साहित्य की दो रचनाएं हैं, लेकिन दो बहुत ही जाने माने वाग्यकारों की बंदिशें हैं ये। जो पहली जो बंदिश है झपताल में जो मैं
1: गौड़
0: गाऊंगी,
1: मल्हार का जो चलन है वो भी अगर आप मतलब आरोह
0: जरूर
1: अवरोह
0: जरूर
1: और राग के बारे में थोड़ी सी पहचान जो हो।
0: जी। तो कुछ जो इसकी विशेषताएं हैं, वैसे तो मैंने बताया कि अलग अलग तरह से गाया जाता है इसे, लेकिन जो मैं प्रस्तुति कर रही हूँ उसमें ये मुख्य जो इसकी स्वर संगतियां हैं वो इस प्रकार हैं। सा रे गा मा गा मा, ये गौड़ की विशेषता।

0: ये गौड़मल्हार की एक शकल ऐसी हाँ। बनती है और ये इन बंदिशों में आपको सुनाई देगी।
1: आप झपताल में जो बंदिश गाने वाली हैं वो पहले
0: जी, जो इसके बोल हैं उनसे अगर आप पूरा स्थाई अंतरा सुने तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि जो वाग्यकार हैं उनकी छाप उसमें आपको मिलेगी। उमड़ घुमड़ आए कारे बदरवा, अजहू पिया नहीं आए मंदरवा, रुत बरखा में सब घर आए, आए न प्रेम रंग रंगीले पियरवा।
1: अच्छा, ये इनका तखल्लुस है
0: प्रेम रंग जी। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेम रंग के नाम से कई लोग रचना कर चुके हैं। मेरे गुरु जी पंडित रामाश्रय झा जी से पता चला कि ये बंदिश जो है ये एक बहुत जाने माने विद्वान वाग्यकार रहे स्वर्गीय पंडित डी टी जोशी
1: जी,
0: उनकी बंदिश है ये
1: जी
0: जो प्रस्तुत कर रही हूँ मैं
1: जी।

0: शुभा जी, आप एक दूसरी भी बंदिश की बात कर रही थी कि गौड़ मल्हार में आप प्रस्तुत करने वाली हैं
1: जी,
0: तो वो रचना भी तो बताइए ना।
1: ये रचना पंडित रामाश्रय झा जी, मेरे गुरु जी, जो राम रंग के नाम से रचना करते हैं, उनकी गौड़ मल्हार की एक रचना है तीन ताल में। और इसमें वो कहते हैं कि घन घेरी आयो री माँ, गगन गरजत डर पावे, बड़ी बड़ी बूंदन बरसे, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, दामिनी दमके चमके कामिनी जियरा धड़के, राम रंग मनुआ लरजे तरसे, घन घेरी आयोरी माँ।
0: जी, और घन जब इस तरह से घेर घेर लेते हैं और कामिनी जो है अगर वो अकेली है तो उसका जियरा जरूर ही धड़केगा और लरजेगा मन। सुनते हैं।

0: श्रोता मित्रों, ये था राग गौड़ मल्हार, और गौड़ मल्हार में शुभा मुद्गल जी से हमने दो बंदिशें सुनी। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रही हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वनियांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

रेल का डिब्बा, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे सोनी महिवाल फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, आज है गीतकार शकील बदायूनी का जन्मदिन। आज भूले बिसरे गीत उन्हीं के लिखे गीतों पर आधारित है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे शबाब फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे मदर इंडिया फिल्म से। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भूले बिसरे गीत।

फिल्म अमर से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा, नौशाद का संगीत था। आज गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार जयदेव का जन्मदिन है। उन्हीं के गीत और संगीत से सजा था आज भूले बिसरे गीत।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आप सभी का स्वागत है और आज के इस अंक के साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो ये था आज का सुविचार।

और अब आज का इतिहास, इसके अंतर्गत आइए एक नज़र डालते हैं 3 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर।

1492 ईस्वी में आज ही के दिन इटली के नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस 3 जहाजों के साथ स्पेन से भारत की खोज पर रवाना हुआ था। 1914 में आज ही के दिन पहला समुद्री जहाज पनामा नहर से गुजरा था। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर ने फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल की थी आज ही के दिन 1960 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में आज ही के दिन बाबा आमटे को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे प्रदान किया गया था। सन 2004 में आज ही के दिन अमेरिकी अंतरिक्षयान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ था और सन 2007 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ रूसी अंतरिक्षयान प्रोग्रेस M61 सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंचा था।

अब एक नज़र डालते हैं 3 अगस्त के जन्मे महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। 1886 में जन्म हुआ था आज के दिन पंचवटी, यशोधरा, साकेत जैसी कालजयी रचनाओं के कवि मैथिली शरण गुप्त का। भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म हुआ था आज के दिन 1916 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी में आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय संगीतकार तथा बाल अभिनेता जयदेव का। भारतीय शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1936 ईस्वी में। 1939 में जन्म हुआ था आज ही के दिन बंगला साहित्य के प्रमुख कवि उत्पल कुमार बसु का। भारतीय क्रिकेटर बलविंदर संधू का जन्म हुआ था 1956 में आज ही के दिन, और 1984 में जन्म हुआ था आज ही के दिन अमेरिकी तैराक और ओलंपिक विजेता रियान लोकटे का। और अब एक नज़र उन विभूतियों पर जिनका निधन 3 अगस्त को ही हो गया था। 1957 में निधन हुआ था आज ही के दिन महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का। स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ सीएम पुनाचा का निधन आज ही के दिन हुआ था 1990 ईस्वी में, और 1993 ईस्वी में निधन हुआ था आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक तथा वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब अवसर की बात करें तो आज इस समय हम मना रहे हैं विश्व स्तनपान सप्ताह, और भारत में आज के दिन मनाया जा रहा है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। श्रोताओं, आज सावन माह की प्रथम सोमवारी है, तो सावन की पहली सोमवारी की आप सबों को अनंत शुभकामनाएं। श्रोताओं, सावन का यह पहला सोमवार बेहद खास होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव की पूजा और व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कुवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दूर दूर से कांवड़िए गंगा जल लेकर बाबा वैजनाथ और देश के कोने कोने में स्थित शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, हर हर महादेव, बम बम भोले। तो आइए इस पवित्र दिन पर हम सब भी शिव की भक्ति में लीन हो जाएं। श्रोताओं, सावन और भगवान शिव की इस अगाध महिमा को बॉलीवुड ने भी बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। तो आइए सुनते हैं।

फिल्म केदारनाथ का यह सुरीला गीत जो इस माहौल में पूरी तरह रच बस जाता है।

अमित त्रिवेदी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म का ये गीत। श्रोताओं, यह गीत सुनते ही मन केदारनाथ की वादियों और बाबा के चरणों में पहुंच जाता है। तो चलिए इसी भक्तिमय गीत के साथ आज की पहली सोमवारी की पूजा का आनंद भी लेते हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। अब आइए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

डिब्बा बंद दूध मुक्त होंगे स्वास्थ्य संस्थान। जहां शिशुओं को स्वस्थ और पोषित जीवन देने के उद्देश्य से कैमूर जिले में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। सप्ताह के दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को डिब्बा बंद दूध और बोतल मुक्त परिसर घोषित किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्तनपान को बढ़ावा देने का सामूहिक संकल्प लिया है। प्रखंड स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को सही खानपान और स्तनपान की विधि के बारे में बताया जा रहा है।

गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा स्वच्छता अभियान, विकसित भारत, टीबी मुक्त भारत तथा डेंगू मलेरिया जागरूकता विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना था। प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के NSS स्वयंसेवकों एवं विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा अपनी रचनात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

रोहतास थाना परिसर में रविवार को चेहल्लुम पर्व और रोहितेश्वर धाम में लगने वाले एक माह के श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष ललन कुमार और बीडीओ ऋषिकेश कुमार संयुक्त रूप से किया। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि चेहल्लुम के अवसर पर निकलने वाले सभी ताजिया जुलूस प्रशासन से प्राप्त लाइसेंस तथा तय शर्तों के अनुसार ही निकाले जाएंगे। जुलूस का रूट और समय किसी भी स्थिति में नहीं बदला जाएगा।

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कैमूर में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरअसल राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को कैमूर जिला प्रशासन तथा मेरा युवा भारत

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय भभुआ में विशेष कार्यक्रम एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खां, भभुआ विधायक भरत बिंद और जिला पदाधिकारी मौजूद रहे।

कैमूर जिले में पुलिस अफसर शाम 6 से 9 बजे तक सादे लिबास में स्पेशल बाइक पेट्रोलिंग करेंगे। एसपी कैमूर शिखर चौधरी के निर्देशानुसार कैमूर जिला में अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के मद्देनज़र पूर्व से थाना स्तर से नियमित गश्ती एवं ईआरबी मोटरसाइकिल वाहन के अलावे स्पेशल बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। प्रतिदिन भभुआ, मोहनिया और चैनपुर थाना से प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी अपने अपने संबंधित क्षेत्रों व मार्गों में शाम 6 बजे से 9 बजे तक सादे लिबास में भ्रमणशील रहकर आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को लेकर चौक चौराहों पर रुक कर वाहनों की जांच करेंगे। विशेषकर एसमेकियर, जुआ अड्डो, नशे से प्रभावित क्षेत्रों एवं अन्य आपराधिक संवेदनशील स्थलों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।

तो श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी। और अब मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो रोहतास और आसपास के क्षेत्रों में आज निकलेगी धूप, बादल छाए रहने और वर्षा की भी संभावना जताई गई है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। कार्यक्रम में हम आगे नज़र डालेंगे समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर, लेकिन पहले हम सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में एक और गीत। जैसा कि आज के इतिहास सेगमेंट में आपने जाना कि गीतकार शकील बदायूनी और संगीतकार जयदेव का आज जन्मदिवस है। हालांकि वे दोनों आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके लिखे गीत और संगीतबद्ध गीत आज भी हमारे जहन में हैं। तो चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी का लिखा एक गीत। श्रोता, शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के एक महान शायर और गीतकार थे, जिन्होंने मुगल आजम और बैजू बाबरा, मदर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए कई यादगार गीत लिखे। तो चलिए, हम सुनवा रहे हैं मदर इंडिया फिल्म से ही एक गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे शकील बदानी का लिखा ये गीत मदर इंडिया फिल्म से, और इसके लिए संगीत दिया था नौशाद ने। और अब आइए नज़र डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की खास खास सुर्खियों पर। तो आज भी हमारे पास है प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र। सभी अखबारों ने डेहरी ईओ की हत्या को लेकर अलग अलग शीर्षकों से खबर छापा है। प्रभात खबर लिखता है, डेहरी ईओ की हत्या, चालक गिरफ्तार, पत्नी बोली विधायक रोज करते थे तंग। डेहरी से पटना लौटने के दौरान वारुण के धनौती पुल के पास हुई वारदात। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बांकीपुर का परिणाम नई सरकार व नए नेतृत्व का तय करेगा भविष्य। और प्रधानमंत्री के हवाले से दैनिक जागरण ये लिखता है, युवाओं को नशे के चंगुल में फंसाने के पीछे दुश्मन देश की साजिश। दैनिक भास्कर इस खबर को सुर्खी बनाई है, लिखता है, लोग छिपकर पीते होंगे शराब, बंदी से बिहार बदला। सीएम ने कहा, शराबबंदी का सकारात्मक असर दिख रहा है। और इस खबर को भी प्रमुखता से छापा है, लिखता है, बांकीपुर उपचुनाव काउंटिंग आज 3 बजे तक परिणाम।

0: खेल समाचारों में है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की नज़रें सन 2030 में भारत के अहमदाबाद पर टिक गई है, जहां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। ग्लासगो में समापन समारोह के दौरान वेटन और राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज अहमदाबाद को सौंपा गया। अखबार लिखता है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों में 13 गोल्ड सहित 39 मेडल जीत भारत चौथे स्थान पर रहा। और बैडमिंटन की नई युवा स्टार तन्वी शर्मा ने सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में जीता ताइपे ओपन। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात।
2: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
5: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी।

अब लेते हैं दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र। अखबार लिखता है, मानसून सत्र में संसद में आज भी जोरदार हंगामे के आसार। यूक्रेन ने रूस पर 600 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, 8 लोगों की मौत, कई इमारत को नुकसान। यूक्रेन ने कहा, यह रूसी हमले का जवाब है।

0: इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपाणी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंध स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी, इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त

0: करण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुँचेगी। यहाँ शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को

0: दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

कर्मा फिल्म से ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में। और अब इसी के साथ देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। सभी श्रोताओं को हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं थाना मोड़ गरनोखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय हैं शेरपुर काला गाजीपुर से। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कार्य रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। तो पेश है आप सबों की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते थे ग्राम नाहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश, दशरथ, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र और डमरू कलाकार ने भी। श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। चलिए अब हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर आया सावन झूम के फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर।

खींचकर मोहम्मद रफी और साथियों की, आनंद बख्शी की बोलें और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं पठानटोली कलेर से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन, सद्दा फारजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, आफिया तस्नीम और अलीशा। ब्रह्मपुरा मानीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। और आप सब हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा और पूनम कुमारी शर्मा। नेका गांव धर्मशाला से इसी गाने के लिए फरमाइशी पत्र लिखा है हमारे श्रोता राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल ने। तो चलिए, आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म का ये गीत।

इसी गाने को सुनना चाहते हैं फोटानी चौक नारायण एस्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित। और दिनारा से हमारे श्रोता हैं जयराम सिंह।

0: इस गीत को सुनना चाहते थे राजनगर कांति निकेतन से हमारे श्रोता कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा गोल्डी, श्वेता रानी गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता और साक्षी मिश्रा ने भी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी सासाराम से समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी, अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर के साथ। चलिए अब कार्यक्रम में सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर धर्मात्मा फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। इंदिवर ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गढ़नौखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आरके सिंह चौहान, और आप सब हैं आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है आखिर फिल्म का एक गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिर के बोल हैं और रवि का संगीत। और सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी और राजीव रंजन विद्यार्थी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चंदोगरी पीपरिया से दुर्गाराम साहू। तो पेश है आप सबों की पसंद पर आंखें फिल्म का ये गीत।

0: और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब आप सुनेंगे थोड़ी देर में पटना केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अति वृद्ध एवं दिव्यांग पेंशनधारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। जीपी गंगापथ को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। मतों की गिनती का कार्य सुबह 8 बजे शुरू हो गया। आज भाजपा, राजद और जनसुराज के प्रत्याशियों समेत 25 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: पटना की प्रतिष्ठित विधानसभा सीट बांकीपुर में उपचुनाव की मतगणना का कार्य एएन कॉलेज केंद्र पर हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर 3-3 मतगणना कर्मी मौजूद हैं। मतों की गिनती 31 राउंड में पूरी की जाएगी। मतगणना केंद्र और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू है। साथ ही बोरिंग रोड चौराहे से एएन कॉलेज की ओर वाहनों का परिचालन आज प्रतिबंधित किया गया है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। 30 जुलाई को संपन्न मतदान में 34.31% मतदान हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना के क्या रुझान हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन के पास। जी आशीष, बताएं, इस समय मतगणना शुरू हुए करीब घंटा भर होने को है, क्या रुझान मिल रहे हैं?
2: जी, मतगणना शुरू हो गया है और फिलहाल डाक मत पत्रों की गिनती जो है वह की जा रही है। शुरुआती रुझान हालांकि थोड़ी देर में आने लगेंगे और हर राउंड के साथ स्थिति जो है वो अपडेट होती रहेगी।
0: जी क्या लगता है आपको, कितने बजे तक स्थिति स्पष्ट हो सकती है आशीष?
2: जी, यदि मतगणना इसी गति से चलती रही तो दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है और सभी राउंड की गिनती पूरी होने के बाद परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे।
0: आशीष, मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम दिख रहे हैं आपको?
2: सुरक्षा की बात करें तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।
0: बहुत धन्यवाद आपका आशीष रंजन, अपडेट का इंतजार रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए समग्र विकास कार्यों में तेजी लाने और पटना के कुर्जी से कालीघाट तक 6.5 किलोमीटर गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में जेपी गंगा पथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आवश्यकता अनुसार गंगा किनारे फुट ओवर ब्रिज निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने समीक्षा बैठक में बक्सर से भागलपुर तक गंगा तट के समेकित और चरणबद्ध विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उद्योग विभाग की ओर से इन जिलों में पार्क निर्माण के लिए 1,050 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ और दरभंगा में 350 एकड़ भूमि में औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार विकास कार्य के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपए की मदद देगी। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की बीमारी का रिकॉर्ड तैयार करने में बिहार देश भर में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 7 करोड़ लोगों की बीमारी का रिकॉर्ड सरकारी अस्पतालों में तैयार किया गया है। 3 वर्ष पहले शुरू हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत यह रिकॉर्ड

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव

लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर शंकर रजक ने बताया कि राज्य के अस्पतालों में 6,57,00,000 लोगों की आभा आईडी बन चुकी है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में आज से मंत्रियों का जन सुनवाई कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि विधानमंडल के मानसून सत्र और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए यह कार्यक्रम 18 जुलाई से 2 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब यह जन सुनवाई कार्यक्रम पूर्व की तरह ही आयोजित होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है, इसे लेकर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। इस बार सावन महीने में चार सोमवार पड़ेंगे। प्रदेश के शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिन्हेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। राज्य में कई अन्य स्थानों पर भी श्रावणी मेले में बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज गंगा घाट से डाक बम जल लेकर बाबा बैद्यनाथ में जलाभिषेक के लिए जा रहे हैं। हमारे भागलपुर संवाददाता ने बताया है कि कांवड़ियों से उत्सव का माहौल बन गया है।
2: भागलपुर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। ये कांवड़िये 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बोलबम ताड़क बम किनारों से पूरा मार्ग भक्तिमय बन गया है। सावन माह के दौरान पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 28 अगस्त तक प्रतिदिन आयोजित होने वाले इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा लोक कलाओं से जोड़ना है, साथ ही बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का परिचय कराना है। इधर जिला प्रशासन की ओर से डाक बमों को प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए कई स्थानों पर शिविर भी बनाया गया है। इन शिविरों में डाक बमों की सुविधा के लिए कई प्रकार की सेवाएं भी दी जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
1: इधर सारण संवाददाता ने बताया है कि सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में रात 2 बजे पट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इधर पहलेजा गंगा घाट पर भी कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। कांवड़िया संगम स्थल से जल उठाकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर और मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हो रहे हैं। पटना के बैकटपुर धाम और बिहटा स्थित बिटेश्वर स्थान समेत विभिन्न शिवालयों और मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में आज सुबह हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और सीवान जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस अवधि में किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश की चेतावनी है।
3: दिनांक 3 अगस्त को राज्य के गोपालगंज एवं सिवान जिलों में अति भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों, पूर्वी चंपारण, सारण एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य

0: के किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर हमारे बांका संवाददाता ने बताया है कि जिले में अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कटिहार जिले के बैरिया पंचायत के सुलकंधा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक बालक की मौत हो गई। नेपाल के सुनसरी समेत तराई क्षेत्र के विभिन्न भागों में तनाव के हालात के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा क्षेत्र में सघन वाहन जांच, गश्त और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSB के जवान पूरी तरह अलर्ट हैं। बिहार पुलिस ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और बगहा पुलिस अधीक्षकों को सीमा पार की गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। रोहतास पुलिस ने डेहरी के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों के पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, खाली मैगजीन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में SSB और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में एक आम के बगीचे से 30 किलो गांजा बरामद किया है। तस्कर मौके से फरार हो गया। सशस्त्र सीमा बल, जयनगर, बिहार STF और बिहार पुलिस SOG की संयुक्त टीम ने विशेष कार्रवाई में 50,000 रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा और 2 मोबाइल फोन के साथ 2 भारतीय व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 11 दिनों की कड़ी खेल प्रतिस्पर्धा के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का ग्लासगो में एक भव्य समारोह में समापन हो गया। भारत 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा है। समारोह में शताब्दी संस्करण की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। स्कॉटलैंड के अधिकारियों ने राष्ट्रमंडल खेल का ध्वज और कमान भारतीय प्रतिनिधियों, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संगठन के अध्यक्ष PT उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी को सौंपी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नशे के खिलाफ देश में 100 सप्ताह की जंग छिड़ी। अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान शुरू किया। प्रभात खबर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखता है, हर मंत्री, विधायक, जनसेवक, सरकार का एक एक पल बिहार के लिए। दैनिक जागरण लिखता है, 20 वर्षों और 3 चरणों में विकसित होगी पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप। आज अखबार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर को अपना शीर्षक बनाते हुए लिखा है, किसके सिर बंधेगा ताज, फैसला आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी। JP गंगापथ को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के कुर्जी से कालीघाट तक गंगा चैनल विकसित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने गया और पटना के मसौढ़ी में नकली और अवैध दवाओं के 8 गोदामों के साथ एक विनिर्माण इकाई को जब्त किया। और सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों और शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों का लगा हुआ है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
1: स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आसमान में बिजली के चमकने गरजने कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान

0: में शरण लें, जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। शतावर्ष के अंतर्गत हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आज दिन भर और रात के 11:10 तक प्रसारित और रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर हम रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। सुबह 10 सुनिएगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले। 10:05 पर हमारा कार्यक्रम होगा घूमता माइक्रोफोन और सुबह 10:30 लोक माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। 10:45 पर सुनिएगा रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। दिन के 11 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 12 दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे पुनः विविध भारती के कार्यक्रम। अपराह्न 2 पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें आप सुनेंगे हमारे पटना केंद्र से ही रिले। अपराह्न 2:15 पर मध्याह्न समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और अपराह्न 2:30 से आप पुनः सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 5 सुनेंगे आप हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले। हमारी शाम की सभा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। शाम 5:30 महिलाओं के लिए कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे घर आंगन। शाम 6 सुनिएगा भोजपुरी लोकगीत और 6:05 पर हम रिले करेंगे पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। संध्या 6:10 पर कार्यक्रम होगा गांव घर। इसमें आज चर्चा होगी स्तनपान क्यों है जरूरी।

भी, क्योंकि इस समय स्तनपान सप्ताह मन रहा है जो 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। गांव घर कार्यक्रम में एक वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा बच्चों में कुपोषण और उनका समाधान। वार्ताकार होंगी वैष्णवी भारद्वाज। संध्या 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। सांझ गीत 7:00 हम आपको सुनवाएंगे। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद और 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास। 7:30 प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 8:00 से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा और रात्रि 8:15 से आप पुनः सुनेंगे कार्यक्रम ई मन पसंद। रात्रि 9:15 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 9:00 से आप सुनेंगे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत। रात्रि 9:15 होगा कार्यक्रम बंदगी और रात्रि 10:00 से आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग का प्रसारण। 10:30 कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है हमारे केंद्र से। अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

पूर्णिमा की आवाज में आप सुन रहे थे माँ फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सासाराम से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सावन के कुछ गीत। आज मिलन की रात, अब लीजिए सुनिए मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा ये गीत। संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

गीत मालिका कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में निगाहें फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब गीत मालिका कार्यक्रम के अंत में हम सुना रहे हैं क्रिएचर 3D फिल्म से एक गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत को लिखा है टोनी कक्कड़ ने और संगीत दिया है मिथुन ने।

इस गीत के साथ ही गीत मालिका कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। अब थोड़ी देर में हम आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूं तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूं राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: मुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर एआर कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुका।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं,

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं? बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
1: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय सुबह के 10:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन।
2: घूमता माइक्रोफोन कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को अख्तर इमाम अंजुम का नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन हम ओबी पर आधारित कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं। महत्वपूर्ण दिवस पर हम करते हैं लाभप्रद चर्चा, जिसे आप भी बड़े चाव से सुनते हैं। आपने वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस मनाया, विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, आप मनाएंगे हिरोशिमा दिवस, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों, वर्ल्ड लंग्स कैंसर दिवस का उद्देश्य है कैंसर के बचाव के लिए जागरूकता उत्पन्न कराना। हम आप बीड़ी सिगरेट या किसी प्रकार के तंबाकू के धुएं से दूर रहें, प्रदूषण से बचें, लगातार खांसी, सांस फूलने या सीने में दर्द जैसी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलकर जांच कराएं। हिरोशिमा दिवस शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। परमाणु हथियारों के भयानक परिणामों से सीख लेकर उसे समाप्त करने की प्रेरणा के साथ हम उस समय पीड़ितों को याद भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस का मुख्य उद्देश्य है हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा देना। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ 1942 के ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है। अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए महात्मा गांधी का नारा करो या मरो, जिससे देश प्रेम की भावना जगी थी, आज़ादी की राह आसान हुई थी, जिसके बाद 1947 15 अगस्त को हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य है युवाओं से जुड़े मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना, अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समाज के विकास उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक 15 अगस्त को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय त्यौहार है। उस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करते हैं, देश का विकास दर्शाते हैं, कैसे प्राप्त हुई स्वतंत्रता उसे बताते हैं। जब हमारे देश के वीरों वीरांगनाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब हुआ हमारा भारत स्वतंत्र। 200 वर्षों के ब्रिटिश काल से हमें मुक्ति मिली, जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनगिनत सेनानियों के लंबे संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है स्वतंत्रता दिवस। अब बता दें कि विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य है कि महिलाओं को स्तनपान एवं उस कार्य को दृढ़तापूर्वक करने के लिए जागरूक करना होता है। इस विषय पर आइए सुनते हैं सासाराम सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात की बातचीत। पहले आप आकाशवाणी के श्रोता को आप अपना परिचय कराइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पदस्थापित हैं, बताइए।
3: नमस्कार आपको और सभी आकाशवाणी

0: सोतागढ़ को। मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात है, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर हूँ और सदर अस्पताल सासाराम में कार्यरत हूँ।
1: अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, पूरे विश्व में दिनांक 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। ये दिवस उन माताओं के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्य रूप से क्या सहायता प्रदान करता है?
0: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में अगस्त माह के प्रथम सप्ताह को स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये स्तन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मदर को बहुत ही मदद मिलती है उनके स्वास्थ्य के संबंधित। जैसे कभी भी प्रसव जब होता है तो गर्भाशय के आकार को नॉर्मल करने में बहुत हेल्प करता है स्तनपान, जो क्योंकि इससे हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो हेल्प करते हैं कि गर्भाशय को नॉर्मल आकार में ला सके। दूसरा चीज कि ये बच्चे की माँ से बॉन्डिंग को इम्प्रूव कराता है।
1: अच्छा।
0: तीसरी चीज़ है कि माँ को लॉन्ग टर्म में बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिससे स्तनपान जो है माँ में उस बीमारियों को रोकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर रहता है, उन सभी बीमारियों को ये रोकता है।
1: तो बच्चे के जन्म के बाद माँ का गाढ़ा पीला दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है एवं संक्रमण से भी बचाता है, तो क्यों?
0: देखिए, क्या होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो हम लोग एडवाइस करते हैं किन्हीं भी नई मदर को कि जब भी डिलीवरी हो तुरंत, जितना जल्दी हो, नॉर्मल डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर या फिर तुरंत बच्चे को स्तनपान कराया जाए।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो शुरुआत का माँ का जो दूध होता है बहुत ही गाढ़ा और पीला दूध होता है, जिससे हम लोग कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है कि बहुत ही बच्चे के लिए बहुत पोषक तत्व, इम्यूनोग्लोबुलिन, प्रोटीन्स वगैरह, बहुत एंटीबॉडीज बहुत अच्छी मात्रा में रहते हैं, जिससे कि बच्चे को होने वाले संक्रमण को ये रोकता है। और साथ ही साथ जब भी बच्चा पेट में रहता है, उससे बाहर निकला, ब्रेस्ट फीडिंग किया, तो उसकी जो आँख में जो जैसे बोलते हैं पॉटी, जिसे हरा कलर का बच्चा शुरुआती दौर में लैटिन पास करता है, उसे मेकोनियम बोलते हैं, उसे भी शरीर से बाहर में निकालने में ये मदद करता है।
1: तो बच्चे के जन्म के बाद उन्हें कितने महीने माँ का दूध मिलना आवश्यक होता है एवं कितनी बार पिलाया जाना चाहिए?
0: जी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हैं सभी माओं के लिए। तो ये एडवाइस है कि जन्म के उपरांत जितनी जल्दी हो माँ का दूध पिलाएं और बच्चे को एक्सक्लूसिव केवल माँ का स्तनपान शुरुआत के 6 महीने तक कराया जाता है। इवन पानी, कोई भी प्रकार का दूसरा अन्य पदार्थ नहीं देना चाहिए। जी, और बच्चे ये कितनी देर में, जनरली बोला जाता है कि बच्चे को 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे में पिलाइए, लेकिन ये बच्चे की डिमांड के ऊपर है, बच्चे को जब भूख लगेगा देना है। लेकिन जनरली यदि बच्चा बढ़िया तरीके से अच्छी मात्रा में यदि दूध पिया रहेगा तो जनरली 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चा फीडिंग के लिए तैयार हो जाता है।
1: जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और बच्चों के जन्म के बाद माँ को बच्चे हेतु स्तनपान नहीं होने पर माँ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ इसे भी विस्तार से बताएं।
0: जी, देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जब भी बच्चे की डिलीवरी हुई उसके बाद बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। यदि जो माँ, जिन माओं को दूध नहीं हो पाता है या फिर किसी कारणवश बहुत सारी कंडीशंस हो जाते हैं, कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि डिलीवरी के दौरान माँ का देहांत भी हो जाता है सम कंडीशंस में, ऐसी अवस्था में यदि माँ नहीं मिल पाती है बच्चे में, ठीक है, चाहे जिस माँ को डिलीवरी हुआ दूध नहीं हो पाए, तो इस पर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जैसे गर्भाशय होता है, स्तनपान कराने से उसकी नॉर्मल आकार होने में हेल्प करता है, तो वो थोड़ा डिले हो जाता है उस मदर में। चाहे एक बॉन्डिंग जो होती है माँ और बच्चे की, एक बॉन्डिंग होती है जो स्तनपान कराने के समय में स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ रहता है, चाहे दूध पिलाने के समय में जो मदर रहती है अपने बच्चे को देखती हैं, तो जो एक बॉन्डिंग डेवलप हो पाती है जितनी जल्दी होती है, चाहे बच्चा जो माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने से जो वो माँ का जो गंध महसूस करता है वो फील करता है कि जैसा मैं पेट में था वैसा ही हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं कर पाते। या फिर माँ को दूध नहीं

0: पिलाती हैं तो लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि जो दूध होता है ना अंदर स्तन में किसी किसी माँ के जम जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो वो जैसे जमने के कारण जो बीमारी होती है मैस्टाइटिस हो जाती है माँ को ना, जो दूध की नलियाँ होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे गाढ़ा दूध जमने से क्या होता है एब्सेस घाव टाइप का बन जाता है। और दूध न पिलाने के कारण माँ में लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय में क्या होता है किसी किसी मदर को ब्रेस्ट कैंसर या फिर गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना लॉन्ग टर्म में थोड़ी रहती है। और साथ ही साथ क्या होता है दूध नहीं पिलाने के कारण मदर में पोस्ट टर्म डिलीवरी डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव भी होता है, ये चीज़ हम लोगों ने देखा है।
1: स्तनपान से माँ के बच्चे का भावनात्मक रिश्ता
0: जी
1: जुड़ता है जी। तो आखिर क्यों जुड़ता है थोड़ा इस पर रस।
0: जी हाँ, दूध पिलाने में दूध में जो रहता है जब भी बच्चा स्तनपान करता है, जब भी सकिंग करता है मदर का जो निपल सक करता है, वो जो सेंसिटाइजेशन जो रहता है वो संदेश जो होता है माँ के दिमाग में जाता है, तो वहाँ से ना एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, जिसे लव हार्मोन बोला जाता है। तो ये एक बच्चे और माँ के बीच में ना बॉन्डिंग डेवलप करने में हेल्प करता है। और जैसा मैं बताया बच्चा माँ के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो ज़्यादा सुरक्षा महसूस करेगा,
1: भावनात्मक
0: रिश्ता डेवलप होएगा और माँ को उतना ही ज़्यादा दूध बढ़िया तरीके से होता है और बच्चे को उपलब्ध अच्छी मात्रा में रहती है।
1: तो हर बच्चे की शुरुआत में 6 महीने सभी पोषक तत्व के लिए माँ का दूध आवश्यक है, इस पर क्या सलाह देंगे जो श्रोता समझ सके?
0: हमारा यही सलाह रहेगा सभी श्रोतागण को कि कभी भी डिलीवरी हो तो हम लोगों ने अक्सर देखा है हमारे पास माएँ आती हैं तो किसी कारणवश से लोग बोलते हैं कि अभी दूध नहीं पिला रहे हैं, बच्चे की डिलीवरी है, माँ अभी बैठ नहीं रही हैं तो अभी हम लोग स्तनपान नहीं करा रहे। लेकिन ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। हमारा पहला काम होना चाहिए कि जब भी डिलीवरी हुआ मदर ठीक है तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी हो उतना कराना है, ठीक है। और जैसे बताया मैंने कि शुरुआत में जो मदर रहती है उनके दूध में गाढ़ा और पीला दूध निकलता है जिसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें बहुत ही एंटीबॉडीज़ रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं, बहुत सारी विटामिन्स रहते हैं जो कि बच्चों के डेवलप होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, वज़न बढ़ने में बहुत ही कारगर चीज होता है। और ये जो दूध होता है बच्चे को बहुत सारे संक्रमण से
1: बचाता है। वो सभी बच्चे या उनकी माताएं स्तनपान जो कराती हैं तो उसका अतिरिक्त लाभ जो है और भी क्या क्या होता है?
0: जी देखिए, ये लाभ तो बोलेंगे तो ये एक ऐसा बॉन्डिंग है माँ और बच्चे का कि इसमें लाभ ही लाभ है। स्तनपान बच्चे के लिए भी लाभदायक है और मदर के लिए भी लाभदायक है। बच्चे को जैसे मैंने बताया कि उसको फीडिंग करने से संक्रमण से रोकेगा बच्चे को, बच्चे का ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, मदर और बच्चे के बीच में बॉन्डिंग डेवलप अच्छी होगी और माँ को भी लाभ है, जैसे कि माँ को होने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनके गर्भाशय का आकार या नॉर्मल बॉडी डेवलप होने में जल्दी होता है।
1: तो नवजात बच्चों को विशेष स्तनपान न होने से उन्हें कौन कौन सी हानियाँ होती हैं या उस क्या क्या खतरा होता है?
0: देखिए, अब पहला चीज़ तो स्तनपान नहीं कराने के कारण संक्रमण न्यूनेटल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, उनका ग्रोथ बढ़िया नहीं होगा, वज़न नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी चीज़ है कि बच्चों में ना हाइपोथर्मिया, मतलब शरीर की एक जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी स्तनपान कराते हैं बच्चे को मदर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं स्किन के साथ और उनका नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ है कि बच्चे का वज़न जैसे पर डे बढ़ना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाती है। और लास्ट में ये होता है कि बच्चे में जॉन्डिस जैसे जनरली बोलते हैं नियोनेटल जॉन्डिस पीलिया जो होती है वो भी डेवलप होने की संभावना इन सब बच्चों में हो जाती है, जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं।
1: तो स्तनपान के प्रति आमजनों को जागरूक करने हेतु कौन कौन सा कार्य होना चाहिए जिससे जागरूकता बढ़े, ये श्रोता के लिए आप?
0: मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए तो सबसे पहले पूरे फैमिली को जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग केवल एक माँ और बच्चे का ही रिश्ता नहीं है, ये पूरे हमारे परिवार और पूरे समाज की और पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है कि हमें नई माँ को सपोर्ट करना है, मेंटली फैमिलियल सोशली सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं

0: कि फर्स्ट जो मदर बनती हैं वो उनको पता नहीं होता है कि कैसे हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। इन सभी तरीकों को जो डॉक्टर रहते हैं वो बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से करानी है, कितने समय करानी है, कब कब करानी है, किस मतलब पोजीशन में बैठ के कराना है, सारा चीज़ बताना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमें एज ए समाज के थ्रू लोगों को जागरूक करना पड़ता है कि आप मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करिए। हमें कहीं पे भी जो कॉमन एरियाज़ हैं वहाँ पे बताना चाहिए, या फिर होल्डिंग या फिर वैसा चीज़ एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि ये जो चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तनपान है माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है।
1: अच्छा, तो आपके यहाँ अस्पताल से स्तनपान जागरूकता के लिए कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? चूँकि आप सदर अस्पताल सासाराम से संबंधित है
0: जी,
1: तो हमारे श्रोता को ये बताएं कि अभी इस सप्ताह के अंदर कौन से कार्यक्रम हो रहे हैं और होंगे।
0: देखिए, अगस्त का पहला सप्ताह जो होता है इसमें विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। इसके लिए सभी माताओं को जो हमारे पास आती हैं उन लोगों को ये बताया जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए, आपके लिए और दोनों के ग्रोथ के लिए, और इस चीज़ के लिए हम लोग जागरूक भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के तौर पे लगा भी रहता है और सब लोग हम लोग जागरूक करते हैं। पूरे केवल माँ को ही नहीं, उनके साथ में जो भी फैमिली आती हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग को हम लोग जागरूक करते हैं।
1: इसमें ANM का भी कोई कार्य है?
0: जी हाँ जी हाँ, ANM जो है हमारे हॉस्पिटल की एक बैकबोन है जो कि हमेशा 24 आवर्स मदर और बेबी के साथ इन्वॉल्व रहती हैं, उनकी देख रेख करती हैं, तो उनका रोल भी बहुत अहम है और वो लोग बहुत जागरूक करती हैं सभी माओं को और पूरे उनके रिश्तेदार।
1: तो हमारे श्रोता को आप अपने माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे कि इस संबंध में क्या वो लोग करें और क्या करना चाहिए उन्हें?
0: जी देखिए, हमारा यही संदेश है कि सभी माँ जो डिलीवरी करती हैं अपने बच्चे को स्तनपान जरूर कराएं। स्तनपान बच्चे का अधिकार है और आपका भी मौलिक अधिकार है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के ग्रोथ के लिए। और कभी भी ऐसी माल प्रैक्टिस नहीं करें कि जिससे बच्चे को उसका हक ना मिले, ठीक ना। और हमेशा बैठ के आप दूध पिलाएं, जब भी दूध पिला लीजिए बच्चे को अपने कंधे पे रख कर उन्हें थपथपी करना है और बच्चे को डकार निकालने के बाद ही अपने बच्चे को अच्छे तरीके से सुलाने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोगों ने कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा देखा है कि जो भी माँ ब्रेस्ट फीडिंग तो करा लेती हैं बट क्या होता है कि वो लोगों ने डकार नहीं निकाल पाती, तुरंत दूध पिला करके बच्चे को नीचे सुला देते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि बच्चा जो दूध है उल्टा मुंह के रास्ते निकालता है और सम टाइम वो क्या होता है कि दूध सरक जाता है, एस्पिरेट कर जाता है श्वास की नली में। उस कंडीशन में बच्चे के लिए बहुत ही जानलेवा कंडीशन होता है। कृपया करके आप उनसे बचें, अच्छे तरीके से दूध पिलाएं। और किसी भी माँ को यदि लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, आप ज़रूर अपने नज़दीकी बच्चे के डॉक्टर या अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनसे सलाह लें, ताकि ये जो चीज़ है पूरा देश और पूरा विश्व जो विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहा है उसको हम लोग कारगर कर सकें और उसमें सफल हो सकें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता साथियों। अब आइए लेते हैं आनंद एक गीत का।

0: दोस्तों, इस गीत से पूर्व स्तनपान विषय पर आप जानकारी योग बातें सुन रहे थे डॉक्टर विवेक कुमार प्रभात से, एवं महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा भी आपने सुनी। अब हम आपसे भी कहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन कैसा लगा। उठाइए कलम और लिख भेजिए आप एक पत्र, हमें रहेगी प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115, और दीजिए यहीं से अख्तर इमाम अंजुम को अनुमति। स्वर एवं संकलन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। लोक माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुना रहे हैं भोजपुरी एल्बम से लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मुन्ना सिंह के स्वर में ये श्रृंगार गीत।

मुन्ना सिंह के स्वर में आप सुन रहे थे ये श्रृंगार गीत। लोकमाधुरी कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं इन्हीं के स्वर में देवी गीत।

मुन्ना सिंह के गाए इस देवी गीत के साथ ही लोकमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है और अब हमारे केंद्र से प्रस्तुत है कार्यक्रम रसधार। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ कांवर भजन। आरंभ में लीजिए सुनिए सुगम सिंह की आवाज़ में विनय बिहारी की ये रचना।

मोहन राठौर के स्वर में आप सुन रहे थे ये कांवर भजन, जिसे लिखा था विनय बिहारी ने, संगीत दिया था राजेश गुप्ता ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधार के अंतर्गत कांवर भजन। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए तृप्ति शाकिया का गाया ये कांवर भजन, तुरब हम बेल के पतैया।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले हरिओम शरण की आवाज में ये भजन आपको सुनवाते हैं।

0: इसी के साथ रसधार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में आपके लिए रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।

0: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में तुम आए, इस एल्बम का गाना जावेद अख्तर के बोल, राजू सिंह का संगीत।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ें RS हरियाणवी रतन के बोल हैं। संगीत अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का, एल्बम तस्वीर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। वसुंधरा दास की आवाज में समीर का लिखा हुआ गाना, संजीव दर्शन का संगीत, एल्बम तलाश।

काले वस्त्र पर मिलने के सवाल, मिलने की जब रिक्वेस्ट की, डेट मांगी कि लेट्स मीट समवेयर, सवाले वस्त्र पर उनको उदू, उदू है आपका राइवल जो है, कंपटीटर, हर फिल्म में एक जो विलन होता है वो उदू होता है, दुश्मन को भी कहते हैं उदू, सवाले वस्त्र पर उनको उदू का खौफ है इतना,

जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आपने सुनी, शायर अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी। और अब अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गाना, हसरत जयपुरी के बोल, दिलीप वर्मन का संगीत, एल्बम रात।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

रंग तरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमाल खान की आवाज़, संगीत भी इन्हीं का है, बोल महबूब के और एल्बम कल रात।

पहला नशा इस एल्बम का गाना सुनिधि की आवाज में, नक्शलायलपुरी के बोल, संगीत है ललित का। ये है आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: श्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने। पहला जो गीत है ये 14वीं का चांद फिल्म का गाना, आशा भोंसले की आवाज़, संगीत रवि का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी

अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं यादों की महफिल इस कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। लीजिए अब सुनिए गृहस्थी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूं के बोल, संगीत है रवि का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे हुए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। फूल और पत्थर इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत है रवि का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों की आँखों में इशारा हो गया।
3: दो बदन फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उड़न खटोला फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत नौशाद का।
1: चले आज तुम जहां से,

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में

0: कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। संघर्ष फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

बिन बादल बरसात, ये उस फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे हेमंत कुमार की आवाज़ में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत हेमंत कुमार का।

गीतकार शकील बदायूनी के लिखे गाने आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत रवि का।

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का यादों की महफिल ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपको आज फेसबुक पर जो टेक्स्ट, जो इबारत हमने पोस्ट की है वो आपको पढ़ के सुना देते हैं। हमारे संस्कारों ने हमें ये सिखाया है कि किसी भी काम की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर की जाती है। किसी अनजान शहर में जब कोई अकेला व्यक्ति अपने दिल और निगाहों को चौकन्ना रखकर जिंदगी की तलाश करता है और उससे घर आने की गुजारिश करता है, तब कई बार परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं। रात भीगी भीगी हो, नदी नारे उफान पर हो, चंदा की चांदनी भी सीने में जलन पैदा करती हो, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना से हमें ऐसा सुकून मिलता है जैसे तपती गर्मी में तरुवर की छांव हो। साथ ही ये आश्वासन भी मिलता है कि एक दिन सुखों की गागर हमारा स्वागत जरूर करेगी। तब सीने की जलन शांत होकर कोई गाता सा प्रतीत होता है और मन ख्वाबों के गलियारों में सो जाता है। ये आज की इबारत है, आपने पढ़ी और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी, प्रार्थना से संबंधित बातें लिखी और आज के गानों की क्या खासियत है ये भी उन्होंने बातें लिख करके भेजी। हमारे एक साथी की बात है कि आज की इबारत भारतीय जीवन दर्शन को चिन्हित करता आदर्शों का समागम है। ये सत्य को उजागर करता है कि भारतीय मानस में हर यात्रा, चाहे वह भौतिक हो या जीवंत आस्था के सहारे ही शुरू होती है। विपरीत परिस्थितियों में जब प्रकृति भी बैरी लगने लगे, तब प्रार्थना इंसान के लिए अंतिम और सबसे सशक्त सहारा बनती है। ये इबारत अकेलेपन के दर्द, आस्था की शक्ति और उम्मीद के सूर्योदय की एक भावपूर्ण यात्रा है। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि आज की इबारत जीवन की यात्रा का सुंदर चित्रण है, जहां हर कदम पर विश्वास, संघर्ष और उम्मीद साथ चलते हैं। जब इंसान किसी अनजान राह पर होता है तो सबसे बड़ा सहारा उसके संस्कार और ईश्वर पर उसकी आस्था होते हैं। ईश्वर का स्मरण मन को वैसी ही शीतलता देता है जैसी तपती दोपहर में किसी घने तरुवर की छांव। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है कि एक दिन सुखों की गागर भी हमारे द्वार पर दस्तक देगी। धन्यवाद आपका। जी हाँ, आस्था की बात तो है ही, लेकिन साथ ही आज के गानों की एक और विशेषता है जो आपने समझ ली है। हम दोनों फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। लता जी की आवाज़ है इसमें, सही लुधियानवी के बोल हैं और संगीत जयदेव का। जी हाँ, आज संगीतकार जयदेव को हम याद कर रहे हैं।

एक हमारे साथी की ये बात है कि सावन का पहला सोमवार देवों के देव महादेव की जय और इधर सुरीले सफर में जयदेव की सुरीली धुनों से सजे गीतों का आगमन, क्या संयोग बना है। आज तो कार्यक्रम में जयदेव का उद्घोष रहेगा। एक साथी लिख रहे हैं कि सच्ची भक्ति और इंसानियत इंसान को ऊंचा उठाती है। भगवान किसी से मिलावट या दिखावा नहीं मांगते, बल्कि वे हमेशा सच्चे और ईमानदार भक्त के साथ रहते हैं। सच्ची भक्ति विश्वास इंसान के दिल से अहंकार, ईर्ष्या और नफरत को मिटाकर दया, प्रेम और इंसानियत जगाती है। ये मनुष्य को नैतिक और अच्छा इंसान बनाती है, जिससे समाज में उसका और दूसरों का जीवन सुधरता है। एक हमारे साथी की ये बात कि आज श्रावण मास के पहली सोमवारी है, इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे हैं, इसलिए सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। विविध भारती के तमाम मित्रों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, यही मेरी जो है शुभकामना है, ऐसा इन्होंने लिखा है। और एक हमारे साथी की बात कि भक्ति की शक्ति से पूर्ण सुक्ति चित्रित करती इबारत की पंक्ति है, आसक्ति की युक्तियों में भटकते व्यक्ति के विभिन्न उक्तियों को युक्ति युक्त तरीके से ईश्वर सम्मुख समर्पण का मार्ग दर्शाती इबारत है, संगीतमय सफर आनंदित करेगा, ये इस बात का हमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी धन्यवाद आपका। चलिए अब हम अपनी जो इबारत है उसके अनुसार ही हम आगे बढ़ रहे हैं। संगीतकार जयदेव के संगीतबद्ध किए गाने भी हैं और हम आपसे ये भी एक सवाल करना चाहेंगे कि जो ईश्वर की भक्ति है या ईश्वर का नाम है या यूँ कहें कि उनके ऊपर जो विश्वास है, वो कब कब कौन सी परिस्थितियों में आपको बहुत संबल देता है? कब आपको लगा कि बस उनके सहारे ने हमें बहुत बड़ा संबल दिया, ये आप हमें बता सकते हैं। घरोंदा फिल्म का गाना भूपिंदर सिंह की आवाज़ में, अमोल पालेकर पर फिल्माया गया है, बोल किसके हैं ये आप बताइए हमें।

घरोंदा फिल्म का गाना, गुलजार का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की ये बात है कि जब कोई अनजान शहर में अकेला अपनों से दूर ज़िंदगी की तलाश में निकलता है तो यही गाना याद आता है, एक अकेला इस शहर में रात में है, रात में और दोपहर में। और जब अपनों की याद सताती है तो सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तब सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, ये गीत हमें याद आता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि दिग्गज संगीतकार जयदेव, उनकी जन्म जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। बेहतरीन काव्य के साथ मेलोडी, मुश्किल फिर भी मनमोहक भावना प्रधान धुनों से सजे उनके गीत धीरे धीरे हमारे नस नस में समा जाते हैं। उनका संगीत शास्त्रीय रागों से परे, बुद्धि को चकरा देने वाला परंतु मन को संतोष और आनंद देने वाला। उनकी बहुत सारी अनुपम सुंदर रचनाएं आज हम सुन रहे हैं। एक साथी ने ये भी लिखा है कि आज की इबारत संगीतकार जयदेव की यादों के फूलों से बुनी जाने वाली है, बुनी जा रही है, तब हम यही कहेंगे उनके संगीत से रचे गीत सुनकर जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे आपके मन को मिलेगा। और विविध भारती के लिए भी कहेंगे कि तुम्हें देखते हैं सुनते हैं तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानते हैं।

सुनते आए हैं। अगर तुम हो संगीत सागर, हम प्यासी नदी समान श्रोता हैं। ये हमारे श्रोताओं की बातें हैं। बहुत धन्यवाद आपका। एक अकेला इस शहर में, ये गाना हमने सुना। आप, ऐसी कोई याद हो आपकी कि आप किसी शहर में, नए शहर में गए हों, जहाँ रहते हैं उस शहर को छोड़ करके किसी नए शहर में गए हों और वहाँ आपने बहुत अकेलापन महसूस किया, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथी बनते गए, मिलते गए, कारवां बनता गया और फिर वो शहर अच्छा लगने लगा, ये बात आप हमें बता सकते हैं। चलिए, प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत आप जानते ही हैं जयदेव का है, गीतकार कौन है ये आप बताइए।

प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुना, जानिसार अख्तर का लिखा हुआ ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि एक अकेला इस शहर में, ये जो गीत हमने कुछ देर पहले आपको सुनवाया था, इसके बारे में लिखा है कि गीतकार गुलजार ने शहरी अकेलेपन को बेहद सारे लेकिन दिल को चीर देने वाले शब्दों में ढाला है। इन उम्र से लंबी सड़कों को हमने तो ठहरते देखा नहीं, जैसी पंक्तियाँ शहर की रफ्तार और इंसान की बेबसी को बेहतरीन तरीके से बयां करती है। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, महानगरों के उस मानसिक तनाव और खालीपन को दिखाता है। एक साथी ये लिखते हैं कि हमारा तो सफर ऐसे ही विविध भारती के संग कटता रहता है, काफी अच्छा लगता है सुनते हुए विविध भारती, दिन निकल जाता है। एक साथी ने ये भी लिखा है कि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरा हुआ, बहुत बार परिस्थितियां डगमगाती हैं, खासकर जब लोगों का नहीं भगवान के भरोसे पर रहता है, पर कुछ ऐसी होनी होती है कि जिससे विश्वास मजबूत ही हुआ है। कठिन समय में भगवान पर विश्वास और अधिक मजबूत होता चला जाता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है, देखिए अब वो जो हम पढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए कुछ देर बाद और आपके जो कमेंट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। दूरियां फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, अनुराधा पौडवाल और भूपिंदर सिंह की इसमें आवाज़ें हैं, सुदर्शन फाकिर के बोल हैं, संगीत जयदेव का। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि एक नई सुबह देखने को मिली। अपने मन की व्यथा को पूरे मन से समर्पित करते हैं और आत्मविश्वास से भर उठता है मन और शांति का एहसास होता है। सुख में भी ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे साथी की ये बात, जो प्रेम पर्वत फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि बहुत मधुर, दिल को स्पर्श करने वाली देशी धुन पर आधारित प्रेम पर्वत का गीत मानो प्रकृति के घेरे में खड़े होकर सुन रहे हैं, मेरे सर्वकालिक पसंदीदा गानों में से एक हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीतकार जयदेव का संगीत शोर नहीं बल्कि आत्मा की धीमी सी धुन था। उन्होंने कम फिल्मों में संगीत दिया लेकिन जो भी रचनाएं दी वे समय के साथ और भी अमर होती चली गई। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास है, जब भी मुश्किल में होती हूँ तो सहारा ज़रूर देते हैं, हर मुश्किल से वही तो हमें बाहर निकालते हैं। और बाकी जो साथी हैं हमारे, उन्होंने ये बात लिखी है कि आज सावन का पहला सोमवार है तो हम ईश्वर की आराधना में लगे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका। और अब मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, सही लुधियानवी के बोल। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। हमारे एक साथी की बात है कि जिंदगी मेरे घर आना ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का स्नेहिल निमंत्रण है। ये याद दिलाता है कि खुशियां अक्सर दस्तक देती है। इस गीत की हर लाइन इतनी प्यारी है कि इस गीत को पूरा सुने बिना तक कान वहीं पर लगे रहते हैं। और हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि धीर गंभीर स्वर में खूबसूरत अंदाज में गाया हुआ दूरियां फिल्म का जो गाना है ये बहुत ही अर्थपूर्ण गाना है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि दूरियां फिल्म का ये जो गाना है ये मेरी लिस्ट में भी शामिल था और उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया है। और एक साथी की ये बात है कि प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव जी की जयंती है। जयदेव जी के संगीत में दैनिक जीवन में आने वाले विभिन्न पायदानों परिस्थितियों को संगीत में ढाला है। उनके गीत हमें से हमें सुकून मिलता है। उनके गीत कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। चले आ रहे हैं किनारे किनारे ये उनके जो गीत हैं उनकी कुछ कुछ लाइनें उन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे मैं एक शाम चुरा लूँ गर बुरा ना लगे। मंजू जी हमें तो मुंबई आकर ऐसा ही लगा बिल्कुल भी हमें अजनबी नहीं लगा। जी हाँ ये दूसरे शहर से जब मुंबई आए तो मुंबई के बारे में इन्होंने बात लिखी। और एक साथी ने यह बात लिखी कि आज की इबारत में सुकून और आश्वासन की ये जो बातें हैं ये हमें बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना है और लता मंगेशकर की इसमें आवाज़ है। वहीदा रहमान और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना। गाना काफ़ी लंबा है शायद हम ये गाना आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे लेकिन जितना भी हम सुनवा पाएंगे आप सुनिए।

रेशमा और शेरा इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, वहीदा रहमान सुनील दत्त पर फिल्माया गया। एक हमारी जो साथी हैं वो लिख रही हैं कि लिखते हैं कि जयदेव जी के गानों में शर्मा बंधुओं का एक भजन नुमा जो गाना है, जैसे सूरज की गर्मी में तपते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया। इस गाने में इतनी कशिश है कि कोई भी व्यक्ति 3 मिनट के लिए रुक कर इसे सुनता ही है। जयदेव जी ने सरल लेकिन आकर्षक धुन बनाई है और सभी की तरह मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है और आज के कार्यक्रम में ये जो गाना है ये बजने वाला है। जी हाँ, अगला गीत है ये और भजन नुमा ये गीत आप ज़रूर सुनेंगे। एक हमारे साथी की बात है कि अपना स्थान कभी नहीं भूलता। मेरी बेटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मुंबई आई, फिर वहाँ ही उसकी जॉब भी लग गई, फिर शादी भी मुंबई में हो गई, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं लगता। मुंबई की भागम भाग वाली लाइफ और फ्लैट वाली लाइफ में वो बहुत मायूस रहती है। हमारे यहाँ पंजाब में बड़े घर और ज़्यादा भागम भाग नहीं है तो यहाँ उसे पसंद आता है। जी हाँ, ये तो सही बात है कि पूरा जीवन या फिर यूँ कहें कि शुरुआती जीवन जहाँ हमने बिताया है वही जगह और वही कल्चर, वही बातें हमें बड़ी पसंद आती है। तो आप कोशिश करें अपनी बेटी को या तो एडजस्ट करने के लिए या फिर से पंजाब लाने के लिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। और एक बात हमारे साथी की ये है कि आज के जो गाने हैं वो शांति से सुनने लायक है और वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए एकदम शांति से सुरीला सफ़र ये कार्यक्रम मैं सुन रहा हूँ। और एक साथी की ये बात कि मुझे जीने दो फिल्म का जो गाना आपने सुनाया वो मेरी लिस्ट का 5वां गीत था जो आपने शामिल कर लिया है, बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका भी धन्यवाद कि आप ये बातें लिखते हैं हमें और इनकी जानकारी देते हैं। चलिए, परिणय फिल्म से ये रचना शर्मा बंधु की आवाज़ें हैं।

0: ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया।
1: एक साथी की ये बात है कि जयदेव जी चले गए, लेकिन उनके सुर आज भी हवा में घुली उस प्रार्थना की तरह है जो हर सुनने वाले के दिल को एक अनकही शांति से भर देते हैं। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता की चमक के पीछे अपने संगीत की आत्मा को नहीं खोया। उनके लिए हर धुन एक साधना थी, हर गीत एक प्रार्थना और हर स्वर ईश्वर को समर्पित एक दीपक। इसके लिए उनके गीत आज भी समय की धूल से अछूते हैं और हर पीढ़ी के मन में उसी ताजगी और पवित्रता के साथ गूंजते हैं। और एक साथी की ये बात है, रेशमा और शेरा फिल्म का जो गीत हमने आपको सुनवाया था उसके बारे में लिखा है कि जयदेव जी का संगीत में क्लासिक टच इसमें साफ

लगता है, और लता जी की आवाज़ का तो क्या ही कहना। और मेरे लिस्ट का ये छठा गीत था जो शामिल हो गया। और लिखा है कि बाल कवि बैरागी की रचना, जयदेव जी का संगीत, लता जी की मधुर आवाज़ और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया गाना। ये बड़ा ही एक अद्भुत एक संयोग है। और एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे मेरे स्कूल की जो प्रेयर थी यानी कि प्रार्थना बहुत अच्छी लगती थी, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। और इस तरह ये जो प्रार्थना थी ये हमें बड़ी ही प्रिय लगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि अपनी निरंतर नई विषय वस्तु पर संचालन के कारण सुरीला सफ़र कार्यक्रम सबसे आकर्षक लगने वाला कार्यक्रम है और VBS का सबसे सफल लोकप्रिय कार्यक्रम अब ये बन गया है। नज़र ना लगे इसकी गरिमा बरकरार रहे। और एक साथी लिख रहे हैं, जयदेव जी का संगीत मनमोहक हृदय स्पर्शी होता है, संभावित चयन का जो ये गीत है ये आपने शामिल किया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दो बूंद पानी इस फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। दो आवाज़ें, मुख्य आवाज़ें इसमें हैं, वो किसकी है ये आप हमें बताइए। सिमी गरेवाल और मधु चंदा पर फिल्माया गया ये गाना।

मीनू पुरुषोत्तम, परवीन सुल्ताना और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो इबारत है ये केवल ईश्वर प्रार्थना का वर्णन नहीं करती बल्कि मनुष्य के भीतर बसे उस अटूट विश्वास की कथा कहती है जो सबसे कठिन राहों में भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ता। अजनबी शहर, भीगी रात, उफनती धाराएं और चांदनी की कसक जीवन के उन क्षणों के प्रतीक है जब हर दिशा मौन हो जाती है। ऐसे समय में प्रार्थना शब्दों से अधिक आत्मा का संवाद बन जाती है जो भय को धैर्य और प्रतीक्षा को विश्वास में बदल देती है। यही आस्था अंततः मन को यह अनुभूति कराती है कि हर अंधेरी रात की नेति

उजाला है और हर अधूरी यात्रा के अंत में एक ऐसा सवेरा प्रतीक्षा करता है जहाँ पीड़ा स्मृति बन जाती है और जीवन फिर से मधुर संगीत की तरह बहने लगता है। और हमारे साथियों ने ये बातें लिखी कि परिणय का जो शर्मा बंधु का गाना भी है, भजन भी है और निर्गुण भी है, वाकई सुनते ही मानसिक ऊर्जा जागृत हो जाती है। संशय मन को शक्ति और सुकून देने वाली सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे सूरज की गर्मी से भजन प्रफुल्लित हो गया, खूब खूब आभार, मन को बहुत ठंडक हो गई इस भजन को सुन करके। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि सूरज की गर्मी से शर्मा बंधु द्वारा गाया गया, ये एक प्रोग्राम में इनसे मिली थी और जितनी मधुर आवाज़ है उतना ही तेज इनके चेहरे पर भी है, ऐसी बात इन्होंने लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। गमन फिल्म से ये अगली जो है ये रचना है, बोल इसमें शहरयार के हैं और संगीत जयदेव का है, फारूक शेख पर ये फिल्माया गया है।

मुझे याद आ गया। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन में इस गीत पर हमने बहुत डांस किया था। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण में ही निहित है। जब आत्मा अपने अहंकार को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाती है, तभी उसे असीम शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। चलिए अगला और अंतिम गाना, आलाप फिल्म का ये गाना यशोदास की आवाज़ में। पर्दे पर कौन गाता है आप बताइए।

आज के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र बस यहीं तक। आपने कार्यक्रम को ध्यान से सुना, आपने प्रतिक्रियाएं हमें दी, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। 15वें राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार पर 8202 मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 29752 मत मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 21550 मत मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 6755 मतों के साथ तीसरे स्थान पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए हैं। कुल 31 राउंड की मतगणना होनी है। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब फिर से प्रारंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

0: वहीं राज्यसभा को भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के करीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के कुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के वैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने आज कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर डेमू ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। अररिया जिले की सिमराह थाना पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के एक जवान सहित 2 लोगों को 225 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार एसएसबी के स्टिकर लगी कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। शेखपुरा की उत्पाद अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में गवाही के लिए बार बार अनुपस्थित रहने पर बरबीघा के तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीन कुमार सहित अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला वर्ष 2017 का है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। पटना की बांकीपुर असेंबली सीट पर जनस्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर लगातार सबकत बनाए हुए हैं। 15वीं राउंड की वोट शुमारी के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के नीरज कुमार पर 8202 वोटों से सबकत बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर को 29752 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 21550 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी 6755 वोटों के साथ तीसरे मकाम पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही सबकत बनाए हुए हैं। कुल 31 राउंड की वोट शुमारी होनी है। गौरतलब है कि बीजेपी सदर नितिन नवीन के इस्तीफा के सबब इस सीट पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज मुख्तलिफ मौजूदात पर अपोजिशन के हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इसमें नीट इम्तहान के इशू पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्रवाई आज दोपहर 12 बजे पहली मुलतवी के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कृष्ण प्रसाद

0: टी ने अपोजिशन की हंगामा आराई के दरमियान कामकाज शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के मेंबरान नीट इम्तहान के सवाल पर तलबा के एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर ऐवान के बीच आ गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अराकीन से अपनी सीट पर वापस जाने की अपील की। इसके बावजूद तातुल जारी रहने के सबब लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को भी इन्हीं मौजू पर हिजब इख्तलाफ के शोरगुल की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी रखा गया। आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे नामा निगार ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत मुख्तलिफ मनादिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में कांवरिया उत्तरवाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। रियासत में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत रियासत के ज़्यादातर अजला में आज सुबह अच्छी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास ज़िले में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने आज कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल ज़िले में भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर डेमो ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। वाकये के बाद मुसाफिरों को महफूज बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रेल इंतजामिया आग लगने की वजूहात की जांच कर रहा है। अररिया जिले के सिमराहा थाना पुलिस ने भारत नेपाल सरहद पर तैनात SSB के एक जवान समेत 2 लोगों को 225 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक SSB के स्टिकर लगी कार से शराब की स्मगलिंग की जा रही थी। शेखपुरा की एक्साइज अदालत ने शराब बरामदगी के मामले में गवाही के लिए बार बार गैर हाजिर रहने पर बरबीघा के थाना इंचार्ज नवीन कुमार समेत दीगर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये मामला साल 2017 का है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज

0: कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया।
2: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
2: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की

0: संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
1: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
0: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारम्भ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
2: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजिज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा GS पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किया

0: गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कू कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है एस डी बर्मन का।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ये रास्ते हैं प्यार के। इस फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है रवि का।

ये दिल किसको दूं, ये फिल्म का नाम है। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, कमर जलाल आबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

बल खाता वो झूमता, बल खाता वो झूमता, बल खाता हुआ

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।

0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम मुलजिम।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, मदन मोहन का संगीत, फिल्म का नाम शराबी।

0: कहाँ के
1: हम चांद आत्मा के
0: हाय हाय वुरूद इतना
1: हाँ हाँ वुरूद इतना
0: चुप ये अदा है ये

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय तुम हो हंसी कहाँ के,
1: हम क्या आत्मा के,
0: हाय हाय गुरूर इतना,

0: या
1: हाय। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अगला गाना रुस्तम सोहराब, इस फिल्म से सुरैया की आवाज़, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: ये है सेहरा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत रामलाल का।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, सुशीला फिल्म का गाना, मुबारक बेगम की आवाज़ में, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत सी अर्जुन का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी बहनों को और सखा भाइयों को, सभी श्रोताओं को नमस्कार। दीपा जी, आपको भी नमस्कार।
2: हमारे सुनने वाले सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को और चंचल वर्मा आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: मैं इंतजार कर रही थी आपके हेल्दी नमस्कार का। अभी बात हेल्थ की होने वाली है तो आज जो हम रेसिपी बताने वाले हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और प्रादेशिक व्यंजन की चर्चा इस दिन की जाती है, तो नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने से हम नए प्रांत को लेकर कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं। अभी हम चल पड़े हैं पश्चिम बंगाल की ओर, तो वहाँ का एक हेल्दी स्नैक्स, मतलब हल्की फुल्की भूख के लिए जो खाया जाता है ना, जब आपको लगे भाई कुछ हल्का फुल्का सा ही खाना है ताकि पेट पर भार ना हो।
2: तो भाई ये जो खास तौर पे शाम का वक्त रहता है
1: जी,

0: जब हम मन कर जाता है एकदम चाय पकौड़ी या समोसे, तो उसके बदले में एक विकल्प देंगे, वो भी हेल्दी।
1: बिल्कुल, और वो हेल्दी विकल्प है झालमुरी, जिसके बारे में बहुत सारे व्यंजन आने शुरू हो चुके हैं कि अलग अलग प्रांतों में क्या नाम है, हमारे श्रोता ये भी लिखकर भेज रहे हैं, किस किस तरह के मसाले डालकर उसको थोड़ा सा बदलाव किया जाता है वो भी लिखकर
0: वो
1: भेज
0: भी
1: रहे हैं, और
0: लिखा
1: पूरी
0: है।
1: रेसिपी उसकी जो बनाने की विधि है वो भी श्रोताओं ने हम तक पहुँचाई है।
0: यानी कि हमेशा नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
1: हाँ, तो भाई आपके प्रांत में जिस तरह बनाई जाती है, लेकिन उसे नए तरीके से कैसे बनाना है आप ये भी सीख सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो रूटीन से हटकर हम नया सीखते हैं हर दिन में,
0: जी
1: उसके बारे में भी हमारे श्रोता हमें लिखकर ज़रूर बताएं। और बात जब सेहत की चली है, तो एक शिशु नवजात जब जन्म लेता है तो उसकी सेहत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है माँ का दूध।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है, 1 तारीख से लेकर 8 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, इसके बारे में आज हम बात कर रहे
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और जब छोटा बच्चा होता है तो उसको सुलाया जाता है कहानी सुनाकर, लेकिन बात सिर्फ छोटों की नहीं हो रही है, यहाँ तो हम सब बड़े बड़ा मन लगा के कहानी सुनते हैं, है ना?
1: तो आपका इशारा कथा सुधा की ओर है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज अशिक्षित का हृदय कथा का दूसरा भाग हमारे श्रोता सुनेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सेहत की, यानी कि एक शिशु के स्तनपान को लेकर, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक शिशु के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद चीज़ होती है माँ का दूध, और माँ का दूध शिशु को पलने के लिए, उसे बड़े होने के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों का एक बेमिसाल मिश्रण होता है। साथ ही इसमें बहुत बड़ी तादाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो शिशु में बीमारियों से लड़ने के लिए वो मदद करती है, और एक शिशु को स्वस्थ भी रखता है माँ का दूध।
0: बिल्कुल सही कहा चंचल आपने। और जन्म देने के बाद माँ की शुरुआती दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं,
1: हाँ
0: और इस दूध में जो जैसा आपने बताया रोग प्रतिकारक और पोषक तत्वों की भरमार होती है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो दो नाम अब आप लोगों ने सीख लिए, कोलेस्ट्रम और लिक्विड गोल्ड, और
1: हाँ
0: ये इस शिशु के लिए बहुत आवश्यक है, एक नवजात शिशु के लिए।
1: बिल्कुल, आप नया क्या क्या सीख रही हैं इसके बारे में ही
0: ये भी
1: बता
0: हम
1: रही
0: बताते
1: हैं।
0: चलेंगे और याद दिलाते चलेंगे, देखिए आज हमने क्या क्या सीखा।
1: तो जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो जो शुरुआती 3 से 5 दिन तक माँ के स्तन में जो दूध आता है, उसमें थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, और ये जो दूध आता है बाद में, 3 से 5 दिन की बात कर रहे हैं शुरू के 3 दिन को छोड़कर, तो ये कोलेस्ट्रम की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा सफ़ेद भी होता है और पतला होता है, और इस दूध में मिठास, पानी, प्रोटीन, वसा, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक शिशु को बढ़ने के लिए, यानी उसके विकास के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें होती हैं।
0: बिल्कुल। और ये कई तरह के संक्रमण जो बच्चे में खतरा हो सकता है उसको
1: हाँ
0: कम करने का काम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। लेकिन स्तनपान के बारे में सही ज्ञान का भी बहुत अभाव है,
1: बिल्कुल,
0: उसका कारण कई हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि छोटे बच्चे पोषक को या किसी और संक्रमण का शिकार कई बार हो
1: हाँ
0: जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो।
0: जी, और खास तौर पर वे महिलाएं जो पहली बार माँ बनी हैं और उनके पास परिवार को उसके परिवार में कोई बड़े नहीं है या कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें समझा सके, तब भी ये जो समस्या है सामने आ जाती है। इसलिए इन दोनों इस प्रकार की जानकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध कराई जाती है।
1: तो चलिए अब गीत सुन लेते हैं।

0: इतने बड़े जहां में तुझको अकेला छोड़ूं कैसे, और एक माँ की भावना भी यही रहती होगी ना, जब एक नया शिशु जन्म लेता है तो माँ उसे सबसे बचा कर रखती है, उसे पूरा पोषण देना चाहती है, पूरा संरक्षण देना चाहती है। और शायद यही वजह है कि हर माँ भी चाहती है कि उसकी शुरुआत स्तनपान से हो उस बच्चे की, और वो बहुत स्वस्थ रहे। और चिकित्सक भी यही कहते हैं कि शुरुआती जो 6 महीने होते हैं उसमें बच्चे को सिर्फ माँ के दूध पर ही निर्भर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, और जुड़ाव भी देखो वहीं से शुरू होता है।
0: हाँ।
1: जो बिल्कुल जन्म जन्म तक चलता है शायद।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक।
1: और आगे जो हम बात कर रहे थे स्तनपान के बारे में, कि ये प्रक्रिया स्तनपान की जो प्रक्रिया है शिशु के लिए संरक्षण और संवर्धन का काम करती है। ये दूध शिशु के लिए केवल पोषण नहीं बल्कि अमृत के समान है। शिशु के लिए स्तनपान एक रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। नवजात शिशु में रोग प्रतिरोधक शक्ति जन्म से नहीं होती बल्कि माँ के दूध से ये ताकत शक्ति बच्चों को मिलती है। माँ के दूध में लैक्टोफॉर्मिन नाम का एक तत्व होता है जो बच्चों की आंतों में लौह तत्व को बांध लेता है, जिसके कारण आंतों में रोगाणु फिर पनप नहीं पाते हैं। और माँ के दूध में सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और एंटीफंगल और रोग प्रतिरोधक शक्ति, और साथ में कई अलग अलग तरह के तत्व मौजूद होते हैं जो नवजात के बेहतर विकास और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एक शिशु के लिए सर्वोत्तम ये आहार है। स्तनपान से शिशु के बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती है, साथ ही माँ और शिशु के लिए एक इमोशनल बॉन्ड यानी कि भावनात्मक रिश्ता भी प्रगाढ़ होता है।
0: और जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इस दूध में वसा है, प्रोटीन है, मिठास है, ये सभी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग को ये लगता होगा, और कई बार जो बच्चियां हैं जो पहली बार गर्भ धारण करती हैं, माँ बनती हैं, तो उन्हें भी मन में शायद ये लगता होगा कि भाई सिर्फ दूध पीने से ही बच्चे को पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और कई बार पानी पिलाएं या कुछ और खिलाएं ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन माँ का दूध अपने आप में पूर्ण संपूर्ण आहार होता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने चंचल। और माँ के दूध की अहमियत से लगभग सभी लोग भली भांति परिचित तो रहते हैं, फिर भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं में ये भ्रांति घर कर जाती है कि स्तनपान की वजह से उनके शरीर की सुडौलता पर विपरीत असर होगा या उनका फिगर बिगड़ जाएगा। ऐसे सोच जो नई लड़कियां होती हैं उनके मन में आता है, और इसी वजह से वे स्तनपान से परहेज करने लगती हैं। माताओं के इसी भ्रम को दूर करने के लिए, स्तनपान के प्रति जागरूकता लाने और स्तनपान के महत्व को समझने के लिए, इसी उद्देश्य से इसकी शुरुआत 1991 में हुई, और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है।
0: और दीपा, माँ का दूध केवल पोषण नहीं, हम कह सकते हैं कि जीवन धारा, जैसे आपने कहा ना कि उसे लिक्विड गोल्ड कहते हैं, तो जीवन धारा भी है। इससे ना केवल एक शिशु बल्कि माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। और चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि माँ को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बच्चे को सेहत नहीं चाहिए, एक गर्भवती स्त्री जिसने 9 महीने तक उस शिशु को पेट में रखा है और बाद में बहुत सारी चीज़ों की जब कमियाँ आती हैं तो वो स्तनपान कराना ही चाहिए, इससे उनको स्वास्थ्य में बेहतरी होती है। प्रसव के बाद बहुत सारी शिकायतें होती हैं एक स्त्री को, इससे भी मुक्ति मिल जाती है।

0: और ये कहते हैं कि एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है।
1: और सबसे बड़ी बात तो ये है ना चंचल, कि माँ और शिशु के बीच का ये जो भावनात्मक संबंध है, ये मजबूत करने का एक बहुत सुलभ साधन है।
0: तो चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले एक गाना सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद में मुझे लगता है कि अब हमें कहानी सुननी चाहिए, और एक वो कहानी जो इस समय अधूरी है। इसका पहला भाग हमारे श्रोता पहले सुन चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग हम सुनवा रहे हैं। सुनते हैं कहानी अशिक्षित का हृदय का दूसरा भाग।
1: चलिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा इस श्रृंखला के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अशिक्षित का हृदय। आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा।

0: और अंतिम भाग। अशिक्षित का हृदय। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना 55 वर्षीय मनोहर सिंह फौज की सेवा से निवृत्त होकर गांव में अब अकेला रहता है। टूटे फूटे मकान में रहने वाले मनोहर ने कुछ समय पहले खेती कराने के लिए जमीन ली थी, जिसमें उसे नुकसान हो गया और समय पर लगान न दे सकने के कारण उसे अपने घर के द्वार पर लगे नीम के वृक्ष को ठाकुर शिवपाल सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। समय सीमा के बाद शिवपाल सिंह उस पेड़ को कटवाने का हुक्म देता है और मनोहर उस नीम के पेड़ को अपनी जान से भी अधिक चाहता है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। गांव का एक बालक तेजा उसकी भावना को समझता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मनोहर पेड़ को बचाने के लिए ठाकुर से 8 दिन की और मोहलत लेता है, परंतु पैसे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है। आज मियाद खत्म होने वाली है, क्या मनोहर सिंह नीम का पेड़ बचा पाएगा जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है? आइए सुनते हैं आगे।
1: एक सप्ताह बीत गया, आज 8वां दिन है। मनोहर सिंह रुपयों का प्रबंध नहीं कर सका। वो समझ गया कि अब पेड़ का बचना कठिन है, पर साथ ही वो ये भी निश्चय कर चुका था कि उसके जीते जी कोई उसको काट नहीं सकता। उसने अपनी तलवार भी निकाल ली और साफ करके रख ली थी। अब वो हर समय पेड़ के नीचे ही पड़ा रहता था और तलवार सिरहाने रखी रहती थी। 8वें दिन दोपहर के समय शिवपाल सिंह ने मनोहर सिंह को बुलवाया। मनोहर सिंह तलवार बगल में दाबे अकड़ता हुआ ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। शिवपाल सिंह और उसके आसपास बैठे हुए लोग बुढ़े की सज धज पर मुस्कुराए। शिवपाल सिंह ने कहा,
2: सुनते हो मनोहर सिंह, एक सप्ताह बीत गया, अब पेड़ हमारा हो गया, आज हम उसकी कटाई शुरू कराते हैं।
3: जी आपको अधिकार है, मुझे रुपया मिलता तो दे ही देता, और अब भी यदि मिल जाएगा तो दे दूंगा। मेरी नीयत में बेईमानी नहीं है, मैं फौज में रहा हूं, बेईमानी का नाम नहीं जानता।
2: अब हम उसे कटवा लेना।
3: ये मैं कैसे कहूं, आपका जो जी चाहे कीजिए।
1: ये कहकर मनोहर सिंह उसी प्रकार अकड़ता हुआ ठाकुर शिवपाल सिंह के सामने से चला आया और अपने पेड़ के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गया। दोपहर ढलने पर 4-5 आदमी कुल्हाड़ियां लेकर आते दिखाई पड़े। मनोहर सिंह झट म्यान से तलवार निकालकर डट कर खड़ा हो गया और ललकार कर बोला,
3: रुको, संभल कर आगे बढ़ना, जो किसी ने भी पेड़ में कुल्हाड़ी लगाई तो उसकी और अपनी जान एक कर दूंगा।
1: मजदूर बुढ़े की ललकार सुनकर और तलवार देखकर भाग खड़े हुए। जब शिवपाल सिंह को ये बात मालूम हुई तब पहले तो वो बहुत हंसे, परंतु पीछे कुछ सोचकर उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और बोले,
2: इस बुढ़े की शामत आई है, हमारा माल है, हम चाहे काटें चाहे रखें, वो कौन होता है? चलो तो मेरे साथ, देखो वो क्या करता है। क्यों मनोहर
3: जी,
2: ये क्या बात है?
3: बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मैं जानता हूं कि अब ये पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता।
2: पर हम तो इसे कटवाए बिना न मानेंगे।
3: ठाकुर साहब, जो आप सच्चे ठाकुर हैं तो इस पेड़ को कटवा ले, और जब मैं असली ठाकुर होऊंगा तो इसे कटने न दूंगा।
2: देखते क्या हो, इस बुड्ढे को पकड़ लो और पेड़ काटना शुरू करो।
1: ठीक उसी समय तेजा सिंह दौड़ता हुआ आया और मनोहर सिंह को कुछ रुपए देकर बोला,
4: लो चाचा ये रुपए लो, अब तुम्हारा पेड़ बच गया।
3: कहिए ठाकुर साहब, रुपए लेना हो तो ये हाजिर हैं, और जो पेड़ कटवाना हो तो आगे बढ़िए,

0: रुपए तो अब हम ले नहीं सकते, रुपए देने की मियाद बीत गई, अब तो पेड़ कटेगा।
1: ठीक है, अब मालूम हुआ कि आप केवल मुझे दुख पहुंचाने के लिए पेड़ कटवा रहे हैं। अच्छा, कटवाइए, मुझे भी देखना है आप किस तरह पेड़ कटवाते हैं।
2: इतनी ही देर में गांव भर में ये खबर फैल गई कि शिवपाल सिंह मनोहर सिंह का पेड़ कटवा रहे हैं। और मनोहर सिंह तलवार खींचे खड़ा है, किसी को पेड़ के पास जाने नहीं देता। ये खबर फैलते ही गांव भर के लोग जमा हो गए। गांव के दो चार प्रतिष्ठित आदमियों ने मनोहर सिंह से पूछा,
0: क्या बात है मनोहर सिंह?
1: मैं रुपए देता हूं, ठाकुर लेते नहीं, कहते हैं कल तक मियाद थी, अब तो पेड़ कटेगा।
0: कल तक ये रुपए दे देता तो पेड़ पर हमारा कोई अधिकार ना होता, अब हमारा उस पर पूरा अधिकार है, हम पेड़ अवश्य कटवाएंगे।
2: भीड़ में खड़े हुए लोगों के बीच में से एक व्यक्ति बोला, जब कल इसके पास रुपए नहीं थे तो आज कहां से आ गए? तभी शिवपाल सिंह का एक आदमी बोला, तेजा ने अभी लाकर दिए हैं। भीड़ में गांव वालों के साथ तेजा का पिता भी था, उसने ये सुनकर तेजा को पकड़ा और कहा,
3: क्यों रे, तू नहीं रुपए चुराए थे? मैंने दोपहर को पूछा तो 3 तेरा बकने लगा था। मनोहर, ये रुपया तेजा मेरी संदूक से चुरा लाया है, ये रुपए मेरे हैं।
1: तेरे हैं तो ले जा, मैंने तेरे लड़के से रुपए नहीं मांगे थे। तेजा बेटा, तूने ये बुरा काम किया, चोरी की। राम राम राम, बुढ़ापे में मेरी नाक कटाने का काम किया, ये लोग समझेंगे मैंने ही चुराने के लिए तुझसे कहा होगा।
4: चाचा, मैं गंगा उठाकर कह सकता हूं कि तुमने मुझसे रुपए मांगे तक नहीं, चुराने के लिए कहना तो बड़ी दूर की बात है।
0: क्यों मनोहर, अब रुपए कहाँ हैं? लाओ लाओ, रुपए ही लाओ, मैं रुपए लेने को तैयार हूं। अब या तो रुपए दे दो या सामने से हट जाओ, झगड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा।
1: ठाकुर साहब, इन तानों से क्या फायदा? रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन पेड़ मैं कटने नहीं दूंगा।
0: आप लोग इस बात को देखिए और न्याय कीजिए, मियाद कल तक की थी, मैं आज भी रुपए लेने को तैयार हूं, अब मेरा अपराध नहीं है, ये बुड्ढा व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है।
2: तेजा सिंह ये सुनते ही आगे बढ़ा और अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतार कर शिवपाल सिंह से बोला,
4: ठाकुर साहब, ये अंगूठी 1 तोले की है, आपके रुपए इससे निकल आवेंगे, आप यह अंगूठी ले जाइए, इस अंगूठी पर मेरे बापू का कोई अधिकार नहीं, यह अंगूठी मुझे मेरे नानी ने दी थी।
2: सब लोग लड़के की बात सुनकर दंग हो गए। ये देखकर तेजा सिंह के पिता ने आगे बढ़कर कहा,
3: ठाकुर साहब, लीजिए ये 25 रुपए और अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए, आप अभी कह चुके हैं कि रुपए मिल जाएं तो पेड़ छोड़ देंगे, अपने वचन का पालन कीजिए, पेड़ छोड़ दीजिए।
2: ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ गया, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब मनोहर सिंह को रुपए मिलना असंभव है, इसी से उन्होंने केवल अपनी उदारता दिखाने के लिए रुपए लेना स्वीकार किया था। अब वो कुछ न कह सके, कारण कि उन्होंने 25-30 आदमियों के सामने रुपए लेना स्वीकार कर लिया था। वो रुपए लेकर चुपचाप चले गए। ठाकुर साहब के चले जाने के बाद मनोहर सिंह ने तेजा सिंह को बुलाकर छाती से लगाया और कहा,
1: तेजा बेटा, इस पेड़ को तूने ही बचाया, मैं तुझी को ये पेड़ देता हूं, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे पीछे तू इस पेड़ की पूरी रक्षा कर सकेगा। भाइयों, मैं तुम सबके सामने ये पेड़ तेजा सिंह को देता हूं, तेजा को छोड़कर इस पर किसी का कोई अधिकार न रहेगा। पर मेरे जीते जी कोई पेड़ में हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी और उसकी जान एक कर देता। मैंने फौज में नौकरी की है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ये बेचारे हैं क्या चीज।
5: अशिक्षित का हृदय। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। लेखक थे

0: विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। मनोहर सिंह की भूमिका में थे जयंत पात्रीकर, ठाकुर शिवपाल सिंह जी श्याम, तेजा सिंह सोहिल पात्रीकर, तेजा सिंह के पिता दीपक केसावलेकर, सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: अभी हम सुन रहे थे कहानी अशिक्षित का हृदय, इसका दूसरा भाग। और इस कहानी को लेकर हमारे श्रोताओं को भी इंतज़ार था, क्योंकि ये दूसरा भाग था। एक श्रोता का ने जो संदेश लिखकर भेजा है कि अशिक्षित का हृदय, जब मैं पहली बार इस कहानी को मैंने सुना तो मैं भावुक हो गई, और आज इसके दूसरी और अंतिम भाग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, और ये बहुत भावुक कर देने वाली प्यारी कहानी है, तो इनका इंतज़ार आज पूरा हो गया।
2: बिल्कुल। और इसी तरह एक और हमारे सखी ने लिख भेजा है कि एक तो जी श्याम जी की दमदार आवाज़, ऊपर से जयंत जी का बेहतरीन अभिनय, तो उन्हें कहानी बहुत ही सुंदर लगी। बेशक हमें भी कहानी बहुत अच्छी लगी, और जब कहानी सुनते हैं तो उनकी जो कहानी में जो पात्र चल रहे हैं और कहानी किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है, हम भी खो जाते हैं, है ना चंचल?
1: और कई बार जो चित्रण है बिल्कुल हमारे सामने होता है कि वो जो नीम का पेड़ है, जो उसका व्यक्ति का दर्द है जिसका पेड़ काटा जा रहा है, वो सब चीज़ें, और एक इंसान जो बहुत सख्त है तो उसका चेहरा छवि कैसी होगी, ये हम अपनी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं एक छवि बना लेते हैं।
2: बिल्कुल।
1: और इसी तरह से स्तनपान की जब हम बात कर रहे थे, इस पर भी एक बड़ा सुंदर संदेश आया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक व्यक्ति पैदा होने के बाद से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में से ही वो पास में खपलता, पास रखी चीज़ों को छूने की, पकड़ने की कोशिश करता है। ये इन्होंने सीखने को लेकर बातें लिखी हैं, जो हमारा अगला विषय होने
2: विषय है वो है। और एक संदेश इसके जो स्तनपान के बारे में है, एक संदेश आया है हमारे एक सखा लिखते हैं कि दूध को आधा भोजन भी कहा जाता है, क्योंकि शिशु के लिए तो वो सर्वोपरि है, और माँ के दूध का सेवन क्योंकि उसमें मिलने वाला पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल शुरुआत के दिनों में सर्वाधिक हुआ करता है।
1: और यही बात करते करते जब मेरी नजर गई घड़ी पर, तो पता लगा कि अंतराल का वक्त हो गया है।
2: तो चलिए

विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब सुनते हैं एक प्यारा सा और बहुत मीठा सा गीत।

0: जाने क्या क्या बना, और इसी तरह से हम जाने क्या क्या सीखते भी हैं।
1: बिल्कुल, बचपन से लेके आज तक का कभी लिस्ट लेके बैठे ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी
0: क्या क्या
1: कि क्या
0: सीखा
1: क्या
0: है।
1: सीखा, क्या क्या चीज़ सीख के छोड़ दी और क्या क्या चीज़ों की सीखने की अभी भी इच्छाएं बाकी हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन ये बात तय है कि नया कुछ ना कुछ सीखते रहना ही चाहिए, तो हमारे जो कहते हैं ना कि मस्तिष्क का विकास भी बढ़ते रहता है। कई बार लगता है ना कि अरे बहुत सीख लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको जहाँ से कुछ भी सीखने का मौका मिले वो सीख लीजिए, ना ये सोचना है कि अरे ये हमसे छोटा है ये हमें क्या सिखाएगा।
1: सही बात
0: कई
1: है,
0: बार छोटों से भी सीखने मिल जाता है हमें, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। और कई बार ऐसा जो सोचा नहीं हो वहां से भी सीखने मिल जाता है।
0: बिल्कुल, दिमाग को चुस्त दुरुस्त अगर बनाए रखना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीखते रहें। और बहुत सारी जो रिसर्च होती है ना इन चीज़ों को
1: जी
0: लेकर, वो भी ये बताती हैं कि कोई भी नई चीज़ या नया शौक जब हम सीखते हैं तो ये हमारी याददाश्त को भी मजबूत बनाने के लिए बहुत मददगार होता है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हमें हो सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने रोज़ के कामों की सूची बनाएं तो पाएंगे कि उसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि हम रोज़ाना एक जैसा काम करके ही अपना दिन व्यतीत करते रहते हैं। दरअसल अपनी जो बिजी शेड्यूल है, यानी व्यस्तता है या भाग दौड़ भरी जीवन शैली है, इसके चलते कई नई चीज़ें सीखने के लिए समय निकालना कुछ हद तक एक चुनौतीपूर्ण काम भी हो जाता है। चंचल,
0: ये तो
1: है
0: आप
1: ना।
0: बहुत सही कह रही हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि भाई हमें इतना ही करना है, यही करना है, और उसे छोड़कर कुछ भी नई चीज़ वो आजमाना ही नहीं चाहते, नया सीखना भी नहीं चाहते। और नए सीखने वो क्या करते हैं, टाल देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन नया सीखने के बारे में क्या फ़ायदे होते हैं ये जब उनको पता लगेगा तो उनको भी लगेगा कि भाई जो रूटीन की चीज़ें हैं उनसे बंद कर हम अपने दिमाग या शरीर को थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। इसीलिए टाल मटोल जब वो जानेंगे ना फायदे, तो टाल मटोल करना छोड़ेंगे और नया सीखने की मुमकिन कोशिश भी जरूर करेंगे।
1: बिल्कुल, टाल मटोल से याद आया कि हम ये जानते हैं कि ये सारी बातें, लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि हमने हाल ही में एक नया सीखने का मजा कब उठाया था। अगर ये सोचें, और बहुत पहले या फिर कभी नहीं, या ये भी कुछ हद तक संभव है कि हम ये भूल भी चुके हों कि कुछ नया सीखने का हमने आनंद लिया, या इसका
0: हाँ
1: आनंद होता क्या है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही
1: भी
0: कहा,
1: कभी कभी हम भूल जाते हैं। और सच मानिए, ये अनुभव हमारे यानी बड़ों के लिए भी ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी बच्चे को किसी एक चॉकलेट के स्टोर पे, दुकान पे ले जाएं जहाँ पे
0: हाँ
1: इस तरह की कैंडीज वगैरह खूब मिलती हैं, या कोई पसंदीदा खिलौने को पा करके जैसे उसे खुशी मिलती है ना, शायद वैसी खुशी वैसा आनंद हम बड़े हम लोगों को भी आए।
0: और दीपा विज्ञान भी यही कहता है कि जब कोई नया अनुभव हमारे दिमाग को ऐसी खुराक देता है तो वो चीज़ हमारे मूड को बहुत बेहतर बनाती है और तनाव को भी दूर करती है, यानी कि तनाव छू मंतर। और नया सीखकर हम संपूर्णता और गर्व भी महसूस करते हैं। साथ ही दूसरा काम जो कोई नहीं कर सकता वो भी हमें आ जाता है, और हमारा आत्मविश्वास, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, इन चीज़ों में भी विकास होता है।
1: बिल्कुल, और जब नया सीखते हैं तो देखो खुशी की एक बात ही अलग होती है। वो दिन सारा दिन एकदम ऊर्जा में हमारा बीतता है, और जब हम ये नया सीखने की शुरुआत करेंगे तो पहले से ज़्यादा समय मिलेगा हमें। सुनने में अजीब ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सही है। दरअसल में हम जब अपने रूटीन से हटकर कुछ करते हैं और अपनी रोज़ाना या जो अपना जो साप्ताहिक सारणी होती है ना, एक टाइम
0: हाँ
1: वीकली टाइम टेबल कह लीजिए उसे,

0: उसमें कुछ नया जोड़ते हैं तो होता यह है कि हम अपना पूरा जो शेड्यूल है वो बदल देते हैं और उसी समय में से थोड़ा समय इसके लिए हम निकाल लेते हैं।
1: बिल्कुल, जहाँ एक बार लगता है ना कि नहीं हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम कहाँ से समय निकालें, लेकिन वो चीज़ जब हमें रुचि देने लगती है और मज़ा आने लगता है उसमें, तो हमारा जो पूरा शेड्यूल है या टाइम टेबल है उसे हम बदल देते हैं और फिर वहीं उस चीज़ के लिए वक्त मिल जाता है। तो क्या इरादा है, गाना सुन के आगे बढ़े?
0: बिल्कुल उसी का वक्त हो रहा है।

0: आन का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: आए हैं दूर से, यानी कि संदेश बड़ी दूर दूर से आए हैं भाई हमारे श्रोताओं के, और बड़ी दूर दूर से जो श्रोता बैठे सुन रहे हैं उन्हीं के संदेश हम पढ़कर सुनाते हैं। नया सीखने को लेकर हम जो बातें कर रहे थे, इसके लिए हमारे श्रोता कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जितना सीखें उतना ही एहसास होता है कि अभी और गहरे उतरना है, कुछ और सीखना बाकी है। हर इंसान, हर अनुभव, हर यात्रा, हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। समय लगातार बदल रहा है, नई तकनीक, नए विचार, नए तरीके हमारे सामने हर दिन आते रहते हैं। यदि हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि अब सब कुछ सीख लिया है। जिज्ञासा को जीवित रखिए, प्रश्न पूछिए, अनुभवों से सीखिए और नए दिन का स्वागत हमेशा एक विद्यार्थी की तरह कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है
2: बिल्कुल।
1: और अंत में लिखते हैं कि जो सीखना

0: सीखना नहीं छोड़ता, वो कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ता। ये बहुत सही बात है, जो सीखेगा वही आगे भी बढ़ेगा और नए नए अनुभव भी उन्हीं को मिलेंगे जो नया सीख रहे हैं।
1: और ऊर्जा में भी रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा, जो हमेशा निरंतर नया सीखना चाहते हैं। एक संदेश और आया है, ये कहता है कि नया सीखने के लिए तैयारी ज़रूरी है, खासकर आजकल के मोबाइल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग के साथ चलना अत्यंत ज़रूरी होता जा रहा है। बच्चे लोग तो इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीख लेते हैं, वही मेरे जैसे बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उतनी आसानी रहती नहीं है। फिर भी इस बदलते युग के साथ कदम मिलाना भी ज़रूरी है। विविध भारती के इस मंच पे से सके सहेली कई सारी नई नई जानकारियाँ अक्सर मिलती रहती है उनसे, जो हम जैसे लोगों के लिए एक सहारा सा बन गया है। तो देखिए, ये परिवार ही ऐसा है, हम सब एक दूसरे का सहारा है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम और आप मिलकर यही कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को शिक्षित करते रहें और जानकारी से भरते रहें।
0: इसी तरह से दीपा, जब हम प्रांतीय व्यंजन लेते हैं तो कोई महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई बंगाल में है, तो हर प्रांत के व्यंजन अलग होते हैं। यहाँ बैठकर हमने ये कोशिश भी शुरू की है कि प्रांतीय व्यंजन जब हम ले रहे हैं तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक किस तरह से मसालों का बदलाव होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का बदलाव करके एक व्यंजन को किस तरह से नया बना दिया जाता है।
1: बिल्कुल, चीज़ें तो वही होती हैं, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन हम अपने घर में ही अगर सुन लिया है कहीं पे कार्यक्रम के दौरान कि भाई आज तो पश्चिम बंगाल की कोई चीज़ को हम कोई व्यंजन को सीख रहे हैं, तो हमारे घर में क्या क्या वो चीज़ है और हम कुछ ऐसे उसमें क्या चेंजेस करके एक नई कुछ रेसिपी हम बना सकते हैं।
0: तो सीखने के लिए तैयार रहने पर अगला संदेश मैं पढ़कर सुना रही हूँ आपको भी और हमारे सभी अन्य सुनने वालों।
1: चलिए,
0: बहता हुआ पानी साफ सुथरा और गतिमान होता है, मंजिल तक पहुँच जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अंत तक हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नया करने की चाह जीवन को उत्साह से भर देती है। आजकल मैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए छोटे छोटे से स्वेटर बना रही हूँ, इन्हें मैंने YouTube पर देखकर सीखा है, और कुछ नए स्टाइल से पैटर्न बनाना था तो थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन अब तक वो करीब करीब आधा बनने तक आ गया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और एक ना एक दिन ये पूरा भी हो जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और बिल्कुल हमें ये विश्वास है कि आप इसे ज़रूर पूरा कर लेंगी, और जब ये पूरा होगा तो आपको खुशी होगी तो होगी, जिनके लिए आपने बनाया है
1: उन्हें भी खुशी होगी। और आप संदेश के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि जो आप स्वेटर बना रही हैं वो पूरा हो चुका है
0: जी,
1: है ना। एक और संदेश आया है, ये कहता है कि आदमी पैदा होने के बाद से सीखना प्रारंभ कर देता है, शिशु अवस्था में ही वो अपने पास रखी चीज़ों को छूने के लिए या उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सीखने की ललक बढ़ती जाती है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ते वक्त वो तरह तरह के विचारों और व्याख्यानों को से बहुत कुछ सीखता है, और पुस्तकों में जो अलग अलग बातें लिखी होती हैं उनसे सीखता है, प्रयोगशाला में अलग अलग आजमाते हैं वो प्रयोग करते हैं उनका प्रभाव जानता है, शादी ब्याह के बाद पत्नी के साथ जीवन जीने की कला सीखता है, लोगों को प्यार करना और सम्मान देना भी सीखता है। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन आदमी के जीवन में जारी रहती है।
0: इसी तरह से एक संदेश में छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की बात है कि कोई भी नया सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए
1: जी,
0: नए काम बच्चे की तरह सिखा दिए जाते हैं। एक दूसरे प्रदेश के व्यंजन को भी बनाना सीखना चाहिए, यही बात अभी हम भी कर रहे थे, तो व्यंजन बनाना सीखेंगे लेकिन पहले गाना तो सुन लें।

0: श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरन।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक कुछ नया सीखने की बात कर रहे थे हम, हाँ, है ना, तो लगातार एक जैसे रूटीन की से कभी कभी ये तनाव का कारण भी बन जाता है। तो शोधकर्ता है, कहते हैं कि एक अध्ययन में पाया गया कि उबाऊ जीवन जीने वाले को दिल के दौरे का 2 गुना ज़्यादा जोखिम होता है। और वहीं चिकित्सक ये मानते हैं कि अपनी दिनचर्या को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम रोज़ एक ही तरह का काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां उसकी आदी हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है या कम हो सकती है। दूसरी ओर जब हम कुछ नया सीखते हैं या करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को संवरने और निखरने का मौका देते हैं और जीवन के कई क्षेत्रों में खुद को अपडेट भी करते हैं। इसलिए नया तो सीखते रहना चाहिए।
5: जब तुमने बात की खुद को अपडेट करने की, तो मोबाइल ऐसी चीज है जो खुद को अपने आप अपडेट करता रहता है। हम देखते हैं कि जब नया वर्जन आता है किसी भी ऐप का या मोबाइल का, तो वो उसे अपडेट करता रहता है। वहीं जो पुराने जमाने के जो लोग हैं जिनके हाथ में छोटा सा फोन हुआ करता था, अब वो भी अपने आप को अपडेट करके एंड्रॉयड फोन चलाना सीख रहे हैं। तो एक संदेश आया है कि अब हम चलाना सीख रहे हैं एंड्रॉयड फोन, और आप सभी प्यारी सहेलियों से भी हम जुड़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो भाई जिन्हें इस फ़ोन को कई बार लेके हवा लगता था कि भाई इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और हाथ लगाते ही तो कुछ भी इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें टच स्क्रीन होती है
4: जी।
5: तो वो लोग भी इसे चलाना सीख रहे हैं
4: बिल्कुल,
5: और इसके साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार अपना बना रहे हैं
4: बिल्कुल। और ये देखिए, ये अब कार्यक्रम में जितने संदेश आ रहे हैं ये अपने आप ही उस चीज़ का उदाहरण है कि कितने सारे लोग ये जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसे सीखते चले जा रहे हैं।
5: तो अभी झालमुरी जिन्होंने खाई है, बनाई है, वो भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसीलिए हमारे एक श्रोता का संदेश है कि झालमुरी हमने धनबाद में खाई थी, जब छुट्टियों में हम मामा के घर जाते थे तो शाम को इसे जरूर खाते थे।
4: क्या बात है। और एक हमारे श्रोता सखी

0: हैं कि झाल का मतलब होता है मसालेदार और तीखा, और मूढ़ी का मतलब होता है मुरमुरा, यानी कि कुरमुरा या परमल अलग अलग जगह पे इस तरह से बोलते हैं। जब मुरमुरे में उबले चने, उबले आलू, बारीक कटे प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, तली हुई चने की दाल और मिक्सर में कच्चा, उसको मिलाने के लिए कच्चे सरसों का तेल या अचार के सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है तो उसे झाल मुरी कहते हैं। और उड़ीसा में जब इसे बनाते हैं तो इसमें आमा हल्दी, जिसे कच्चे आम का स्वाद होता है, जिसमें वो भी डालते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है।
1: हमारे श्रोता ने पूरी की पूरी इसके व्यंजन की विधि बनाकर बताई है हमें। तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो है मुरमुरे, यानी कि आधार सामग्री जो है इसकी वो 2 से 3 कप लेनी है। सब्जियां बारीक कटी हुई लेनी, जिसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा, उबले हुए आलू और हरी मिर्च। तो अपने स्वाद या अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। और कुछ क्रंची चीज़ यानी कुरकुरी चीज़ें लेनी है, उसमें भुनी हुई मूँगफली, जो चना होता है जिसे हम चना जोर गरम भी कहते हैं, वो लेना है, थोड़े से सेव लेने हैं या कोई भी मिक्स नमकीन आप ले सकते हैं, और कच्चा सरसों का तेल लेना है क्योंकि यही इसकी खास स्वाद की पहचान होती है, थोड़ा सा नींबू का रस लेना है और आम का अचार भी, जो मसाला है
0: उसका जो मसाला है जी
1: वो लेना है। इसे बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में जो सारी सामग्री यानी कि मुरमुरे और कटी हुई सब्जियां, उबले आलू, मूंगफली, नमकीन, सेवे, सभी चीजें डाल दीजिए। ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल, नींबू का रस, अचार का मसाला और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार डालकर इसे मिला लेना है और झाल मुरी बनकर तैयार है। और हमारे पास अब एक गाना भी तैयार है।

0: एक संदेश कहता है,
1: हाँ
0: आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: भाई हाँ, एक संदेश ये कहता है कि झालमुरी को बेलपुरी की सगी बहन कह सकते हैं।
0: अच्छा, हमने जो संदेश चुना है वो ये

0: लगता है कि झालमुड़ी हमारे बिहार में खाते हैं, जिसे भुजा बोलते हैं, उसमें उबले आलू नहीं डाले जाते, चार भुने अनाज यानी चना, मूंगफली, मटर, मटका ये डाले जाते हैं, और सरसों के तेल और कुछ अचार के मसालों के साथ ये बिहार का बेहद लोकप्रिय स्नैक्स है।
1: तो भाई अब ये जो टाइम है ये स्नैक्स का भी हो गया है और कार्यक्रम का भी समय पूरा हो चला है, तो इसके बाद टी टाइम में किसको क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का। नमस्कार
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

0: क्या स्नैक्स खाने हैं वो सब अपनी पसंद से चुन सकते हैं, लेकिन फिलहाल लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेहतनामा।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि अलग अलग जगह
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात है,
3: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला, ब्राउन, ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो

0: नहीं रहती है और दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया।
1: जी
0: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है, लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं,
1: जी
0: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स, नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
1: जी
0: जब
1: जी
0: तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा
1: जी
0: है। एक
1: जी
0: सिंपल चीज़ है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है।
1: जी
0: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो
1: अच्छा
0: पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है, ओके okay? उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में ये उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है।
1: जी
0: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
1: और ये
0: रिजल्ट्स आते
1: सभी
0: हैं,
1: जांच में पता चल जाता है
0: जांच में
1: कि
0: पता
1: हो
0: चल
1: रहा
0: जा
1: है।
0: जा ज़्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र के वजह से होता है, जो ज़्यादातर पहले ज़माने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफ़ी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40, 45, 50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे
1: इसकी
0: हैं।
1: क्या वजह हो सकती है?
0: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो
1: अच्छा
0: आया है हमारे आँख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग
1: जी
0: जाए किसी को,
1: जी
0: या डायबिटीज़ में जल्दी आता है, लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीज़ें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नज़दीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफ़ी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आँख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है। तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक कि बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता। या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो, आप 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो, क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा।
1: जी
0: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं दिखाई, मोतिया बढ़ गया है।
1: जी
0: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, वो किसी भी
1: जी
0: उम्र में कर सकते हैं।
1: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
0: पक्का है
1: जी
0: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: एक चीज़ जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं, उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफ़ी टाइम जल्दी, काफ़ी टाइम कई सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल, है पीछे की कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं,
1: अच्छा
0: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आँख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेज़र से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपके आँख किसी के आँख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए, तो दोबारा तो ज़िंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज़ हो, वरना तो
1: पूरी जिंदगी
0: नाइन्टी
1: चलता
0: नाइन 100% पेशेंट में तो पूरी ज़िंदगी वही लेंस चलती है, किसी
1: जी
0: भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज़ 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज़ फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वॉट मोर अब कैन यू से, कि अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए, बट शी इज़ ओके, शी
1: जी
0: इज़ नाइन्टी
1: तो
0: वन
1: इतना
0: ईयर्स ऑफ एज,
1: लंबा वो
0: इतना
1: लेंस
0: अरसा
1: चलता
0: हो
1: है।
0: गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल। पहले ज़माने में हम लोग को रुकने पड़ता था, कि
1: अच्छा
0: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
1: आजकल ऐसा नहीं है?
0: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई।

0: है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
1: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
0: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम
1: जी
0: दिखाई दे रहा है,
1: जी
0: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफ़ी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं, नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुज़ुर्ग रहते हैं। लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूँ कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आँख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीज़ें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफ़ी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन हो, मोतिया तोड़ने के लिए वो पावर यूज़ कर रहे हैं आँख के अंदर, उसको
1: जी
0: तोड़
1: जी
0: के
1: तो उसका
0: निकाल
1: असर
0: के उसको साफ़ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आँखों की उम्र आपकी उम्र की तरह है, हम
1: जी
0: सब चाहते हैं हमारी आँखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आँखें भी 60 साल की, तो इट हैज़ ऑल्सो एज्ड। तो अगर
1: बिल्कुल
0: मोतिया हो और आपकी आँख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो, तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है पेशेंट को। हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आँख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आँख ठीक हो जाएगी, ड्रॉप्स डालने। जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी
1: जी
0: कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
1: जी
0: आँख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको
1: बिल्कुल
0: दृष्टि देने के लिए,
1: करेक्ट
0: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता, और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
0: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आँख में झेल सकता है,
1: जी
0: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है? क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो
1: जी
0: मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहाँ से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
1: बिल्कुल
0: आँख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल
0: हाइपर मैच्योर हो गया, ज़्यादा बुजुर्ग हो गया,
1: जी
0: तो वहाँ पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आँख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आँख में कहाँ गिरेगा, आँख में जगह कहाँ है,
1: बिल्कुल
0: तो अगर आँख में फट गया तो आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा,
1: जी
0: आँख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आँख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले ही कहा, अगर पीछे की नस, मेन चीज़ पीछे की नस है, प्रेशर ज़्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सह लेगा,
1: जी
0: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सही टाइम पे इसका, कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं, और वो है नेत्रदान।
0: जी
1: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है।
0: जी
1: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं, और कैसे कहाँ जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए?
0: जी बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं।
1: जी जी
0: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है। तो एक किसको फ़ायदा होगा?
1: जी
0: जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फ़ायदा हमने देखा हुआ है, वो ऑपरेशन करके, काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो, तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है, अगर सामने की कांच सूख गई, इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना
1: जी
0: आँख
1: जी
0: देहांत होने के बाद।

0: तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी, और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है।
1: जी
0: जितने जल्द हो सके कांटेक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं, और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है, तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है, और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है।
1: जी वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
0: जी
1: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
0: सही
1: लोग
0: है,
1: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं है।
0: नहीं बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता,
1: जी
0: क्योंकि सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है, या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनों को फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो ज़िंदगी निकल जाती है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी
1: जी
0: दिक्कत होती है।
1: जी तो
0: उनके
1: इससे
0: लिए
1: बहुत
0: भी
1: लोगों की मदद हो सकती है।
0: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की।
1: जी डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं,
0: जी
1: आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं, छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
0: ये नॉर्मल है, आई
1: जी
0: मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी,
1: जी
0: लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है। क्रिकेट बॉल हो, कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं।
1: जी जी
0: लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम हमने बड़े बड़े इंजरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है,
1: जी
0: काफ़ी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज़ हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत ज़रूरी हो
1: जी
0: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नज़दीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना,
1: क्योंकि
0: ये
1: ये कुछ भी खतरनाक हो सकता
0: बहुत
1: है।
0: खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में
1: जी
0: तो स्पेशली जो भी लेट से जहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ
1: फैक्ट्रियां हैं
0: हैं या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके
1: जी
0: आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के,
1: जी
0: वो ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं 1000 टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन वो
1: बिल्कुल
0: हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज़ वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव
1: खुद
0: ग्लास
1: नहीं
0: यूज़
1: कर
0: करो।
1: सकते
0: और
1: लोग।
0: एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि कोई वेल्डिंग कर रहा है, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए,
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने
0: ज्यादातर
1: जी,
0: उसकी आंखों में उड़ता है,
1: हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स,
0: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है, एंड पीपल हैव
1: जी
0: लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये
1: ये
0: कंसेप्ट
1: छोटे
0: बहुत
1: बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहां कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के खास तौर
0: आंखों
1: पर?
0: के वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं,
1: जी
0: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूं कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। न कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता।
1: जी
0: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूं
0: जी
1: कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में
0: खतरनाक
1: जो
0: नहीं है,
1: लोग,
0: फैशन है, उसके आगे गया है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो।
1: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
0: ना
1: हैं?
0: ना ना ना, नो नो नो, नहीं वो दैट इज सी, वो कलर कलर ग्लासेस है,
1: जी
0: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले।
1: जी
0: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द रोड। अब
1: अच्छा
0: टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक कोई पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
1: जी जी
0: वो,
1: जी

0: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है,
1: हाँ
0: कहीं
1: वो
0: गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है।
1: जी बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया हो?
0: हाँ काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी
1: जी
0: टाइम होता है। आँखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आँख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आँख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसका ऑपरेशन हो, आँख बचा सकते हैं। अगर थोड़ी भी देर हो जाए या एक दिन निकल जाए तो कुछ नहीं कर सकते, और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आँख हम बचा सकते थे,
1: जी
0: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करनी चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आँख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुँचे नहीं वहाँ पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आँख में, 2-3 दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुँच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में, तो
1: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
0: लेना
1: बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, बहुत
1: जी
0: जरूरी है,
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते हैं आंखों
0: जरूर
1: से जुड़ा हुआ, और उसके बाद आगे की बात
0: जरूर।
1: करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही है,
0: जी।
1: आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये इन्वायरमेंटल हो गया है।
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है,
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान?
1: सबसे ज़्यादा,
0: ओहो,
1: सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आँख खोल के पानी मारते हैं।

0: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
1: ओहो,
0: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आंख के अंदर, और वो अपने आंख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
1: जी,
0: तो हर टाइम जब हमारी आंख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आंख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी आंख को साफ कर रहा है।
1: जी
0: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
1: जी,
0: तो हर टाइम जब भी हम आंख झपकते हैं तो एक नया आंख का पर्दा तैयार हो रहा है, आंख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
1: हाँ,
0: ठंडा पानी मारेगा,
1: और वो तेज तेज
0: तेज
1: छींटे।
0: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया है
1: तो ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
0: किसी
1: ऊपर।
0: भी परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है और ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
1: ओके,
0: तकलीफ हो रही है
1: जी जी जी
0: आंख को
1: जी
0: पानी मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज़्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
1: जी
0: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
1: जी
0: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने रे आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
1: जी,
0: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
1: दिन में नहीं
0: दिन
1: निकलती।
0: में नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना। आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होने चाहिए।
1: जी,
0: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी।
1: ओके,
0: जितना हो दवाई अवॉइड कीजिए,
1: हाँ,
0: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं नहीं आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं। हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए। क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया
1: जी,
0: तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
1: तुरंत डॉक्टर के पास
0: तुरंत जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
1: हाँ,
0: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आंख को अकेले छोड़िए। अगर आपको लेडीज आईलाइनर यूज करती हैं, पहले काजल यूज किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था।
1: जी जी
0: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे
1: हाँ,
0: थे,
1: लड़कों को भी,
0: हाँ, लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफी सेफ है लेडीज के लिए,
1: जी,
0: जो बाहर से लगते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन,
1: यस,
0: वहां पे लगा दी। जितना हो आंख को अकेले छोड़िए,
1: हाँ,
0: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आंख को अकेले छोड़िए।
1: जी
0: हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आंख को।
1: जी
0: सोचिए, आपके खुद के आंख में आप उंगली डाल सकते हैं?
1: नहीं।
0: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ, आंख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
1: क्योंकि सबसे नाजुक,
0: सबसे नाजुक चीज है। बहुत बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आंख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते।
1: जी
0: हाँ, आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता।
1: जी,
0: वेरी सिंपल।
1: जी,
0: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं।
0: जी जी, और ये हमें कहा गया है कि योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है,
1: जी,
0: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
1: हाँ,
0: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
1: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
0: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या? आंख बंद कर रहे हैं, जब आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है।
1: जी,
0: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, ठंडा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली है, रखेंगे।
1: सही है।
0: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना।
1: जी,
0: जब ठंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना।
1: जी,
0: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
1: तो
0: गिर गए तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना।
1: जी,
0: बर्फ क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना।
1: जी जी,
0: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम, नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है।
1: जी
0: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी

0: जाएगा ही, वो तो ठीक है, इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
1: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी का
0: सेम
1: असर
0: पानी,
1: है।
0: आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट।
1: जी बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहां पर एक गाना सुनते हैं,
0: जरूर,
1: खामोशी फिल्म का गाना। हमने
0: हाँ,
1: देखी है इन आंखों की
0: अरे
1: महकती
0: वाह
1: खुशबू, गुलजार साहब का गाना
0: जी।
1: है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी ज़रूरी बातें हमने की। चूंकि ये ज़माना जो है ये आधुनिकता का ज़माना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आँखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी
1: टुडे, और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था,
0: जी
1: जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं,
0: ओके
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और
1: हाँ,
0: उसकी बात करनी जरूरी
1: वो
0: है।
1: बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है,
0: जी
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड
0: जी
1: डायबिटीज़
0: जी
1: का।
0: जी जी
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो
0: जी
1: ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आँखों में डायबिटीज़ में मोतियाजल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा, कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं,
0: जी
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज़, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज़ बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी
1: आप कोई भी चीज़ खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते हैं, ये होते हैं, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है, ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं, इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज़ है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक हैं, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी,
0: बिल्कुल,
1: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
0: वो बैलेंस नहीं है।
1: हाँ बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के
0: जी
1: तौर।
0: जी जी
1: अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे
0: जी
1: हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया,
0: जी
1: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी का बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है,
0: जी
1: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज़ का।
0: हाँ
1: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी, आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं, सही है, लेकिन ये इसके वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहाँ से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई
0: जी
1: डायबिटिक्स में।
0: जी
1: अच्छा पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है, तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज़्यादा होती है,
0: जी जी
1: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
0: जी जी
1: ओके, आंखों में क्या होता है? आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स है,
0: जी
1: ठीक है। वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज़ है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है,
0: जी
1: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहाँ से लीकेज आता है।
0: जी जी
1: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहाँ हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है
0: तो लीकेज किस चीज का?
1: ब्लड निकल आता है
0: जी।
1: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून पेशी अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहाँ कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए और सूजन आए तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
0: बिल्कुल,
1: और ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीज़ें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज़ जिनको है आँख का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आँख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
0: जी,
1: उनको पता है सडनली आँख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
0: जी।
1: डायबिटीज़ की दो ही चीज़ें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
0: जी।
1: डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियाँ हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो ये चले जाने वाली है,
0: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
1: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
0: जी।
1: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
0: जी,
1: इनको कंट्रोल करते हैं हम
0: जी।
1: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आँख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें हैं ना,
0: बिल्कुल।
1: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
0: जी,
1: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर,
0: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेक
1: बहुत जरूरी है
0: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
1: जी।
0: डॉक्टर साहब यहां एक गाना सुनते फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज़ की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत ज़रूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज़ में असर आँखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहाँ पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आँखों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है, दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आँखों में भी काफ़ी टाइम अगर आँख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है, देखिए आँखों को बहुत ही बचाया गया है। देर समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आँखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को दे, काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे, अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज़्यादा आ जाए,

0: बड़े साइज के होने चालू हो। ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आँख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीज़ें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको आँख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आँख का हिस्सा नहीं, वो आके वहाँ पे चिपका हुआ है, तो जहाँ पे वो चिपका है काफ़ी टाइम, वहाँ से वो सटक भी सकता है, जिसको
1: ओके,
0: रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं।
1: ये प्रेशर की वजह से होता है?
0: काफ़ी चीज़ों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
1: अच्छा
0: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को,
1: जी
0: सेम चीज़ है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है अनफॉर्चुनेटली,
1: जी।
0: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो इट्स इज़ वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज़ में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल,
0: अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
1: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान होना
0: जान ही नहीं
1: शुरू हो
0: आएगा ना,
1: जाएंगे।
0: उसमें
1: जी
0: जान निकल
1: जी
0: जाती है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है जिसपे
0: ये
1: ये सब होता
0: डायबिटिक
1: है?
0: रेटिनोपैथी में होता है एक,
1: जी
0: जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
1: ये क्या होता है?
0: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहाँ पे लाइट जाता है,
1: जी
0: उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं
1: जी
0: अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डीजनरेशन यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके
1: जी
0: दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
1: अच्छा
0: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
1: जी
0: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई, तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
1: इसके
0: ये
1: लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
0: लक्षण कम दिखाई देता है
1: अच्छा
0: और कोई नहीं,
1: जी
0: कम दिखाई देता है, तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज वो स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना, तो
1: जी
0: हमको बराबर वो स्लाइसिस, वो उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहाँ पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, या ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है, एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको 4-5 लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज़्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हाल चाल बहुत कम होता है, तो आँख की रोशनी उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि हमको मोबाइल देखना है या TV देखना है, लेकिन फिर हम कुछ
1: ज्यादा
0: शरीर में,
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आँख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं,
1: जी।
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीज़ों में, आप भी
1: बिल्कुल
0: जानते हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज़ में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे ही आँखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज़ का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक
0: ये
1: चमत्कार
0: अपने
1: है।
0: आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार।

0: आप भी
1: जी
0: जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है
0: आप जानते हैं ना,
1: बिल्कुल।
0: वापस जाइए, वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस
0: वर्चुअल
1: बिल्कुल
0: इमेज है। अरे
1: हाँ,
0: वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया,
1: हमारी आंखों में
0: अब
1: सीधी
0: हम
1: होती
0: एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं। अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार।
1: है कमाल है
0: ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
1: जी,
0: ये
1: यहां
0: कर
1: से
0: सका
1: आते
0: बचपन
1: आते
0: से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ बढ़
0: हाँ,
1: जाता
0: बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, देव केप समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: है। यस
0: क्योंकि
1: डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है,
0: जी
1: और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता
0: दोबारा कहता हूं, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: है?
0: ना
1: डॉक्टर
0: हो,
1: दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो
1: सेल्फ
0: जरूर डालिए।
1: मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ, देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते
1: जी जी
0: हैं, हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू, दे आर मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस
0: उसी
1: करें।
0: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना,
1: जी
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
1: बिल्कुल
0: नेचुरल
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहे
0: हाँ,
1: हैं
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता।
1: जी
0: ओके, लेकिन
1: बिल्कुल
0: मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए,
1: जी
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए।
1: जी
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे, हाँ,
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी बातें आपने
0: उसके
1: बताई।
0: लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं मरने तक। शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखें, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपया करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए। ये इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहा है।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
1: बिल्कुल
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इंपॉर्टेंट है, फील भी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें। ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें।
1: जी
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: हाँ,
1: बात
0: कि
1: है
0: किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन
1: नो
0: लाइफ,
1: शॉर्टकट्स इन लाइफ। बहुत सही
0: ये
1: बॉटम
0: बहुत
1: लाइन
0: है।
1: है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप
0: थैंक
1: राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के
0: यू।
1: बारे में आपने बातें की।
0: नहीं,
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना हो, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं, तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो
1: जी
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: सेहतनामा,

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े

0: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनेंगे कुछ ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल

0: को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन 5:10 पर, और 5:30 पर हमारी बहनें अपना प्रसारण सुनेंगी घर आंगन। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्तनपान सप्ताह की बात होगी, साथ ही मद्रासी कढ़ाई और प्रेरक महिलाओं के संदर्भ में कस्तूरबा गांधी की चर्चा की जाएगी। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आप भोजपुरी लोकगीत सुनते हैं संध्या 6 और रात्रि 9:00। 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार प्रसारित होता है, हम इसे रिले करते हैं।

ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर आप हमारे केंद्र से नित्य प्रति सुनते हैं 6:10 पर। आज के इस कार्यक्रम में वैष्णवी भारद्वाज जानकारी देंगी बच्चों में कुपोषण और उनके समाधान के संबंध में। अलावा इसके खेती के साथ बाग अवश्य लगाएं और स्तनपान क्यों है ज़रूरी, इसकी भी चर्चा की जाएगी।

संध्या 6:40 पर आप हमारे केंद्र से सांझ गीत के अंतर्गत भोजपुरी फिल्म संगीत सुनते हैं और 7 हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास का प्रसारण समय है 7:15 और आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आप सुनते हैं 7:30 और 7:45 पर।

ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद सुनिएगा 7:50 पर और रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। ई मनपसंद का शेष भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 से और समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:45 पर। 9:15 पर बंदगी के तहत आप कुछ मनकबत सुनेंगे। रस रंग के अंतर्गत आप सुनते हैं एल्बम सॉन्ग्स 10:15 पर हम इसे आपके लिए पेश करेंगे और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं और यह वक्त है जब आप भक्ति रचनाएं सुनते हैं। तो लीजिए सुनिए वंदन कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं।

जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है? केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा प्रभु है, और बोला

प्रभु एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूँ, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

0: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

भागवत किशोर की आवाज़ में अभी आपने यह भक्ति रचना सुनी और इसी के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे महिलाओं का प्रसारण घर आंगन।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो पर आपकी पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन में। आज के इस सफ़र में हमारे पास आपके लिए बेहतरीन गाने और प्यारी प्यारी बातें हैं, दिल को छू लेने वाले पुराने और नए गाने। सखियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे माँ का दूध शिशु का पहला और सर्वोत्तम आहार है, यानी कि शिशु के लिए माँ का आंचल और उसका दूध ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कला संस्कृति में हम जानेंगे मद्रासी कढ़ाई और साथ ही कस्तूरबा गांधी पर। सखियों, अब अपने कार्यक्रम की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सब रेडियो के सेट के पास बैठ जाइए, क्योंकि आज हमारे घर आंगन में बातचीत का सिलसिला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। सखियों, सावन का महीना आ गया। यह महीना सचमुच प्रकृति का सबसे सुंदर रूप लेकर आता है। बारिश की ठंडी बौछारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और चारों तरफ छाई हरियाली मन को असीम शांति और सुकून देती है। यह मौसम न सिर्फ धरती की प्यास बुझाती है, बल्कि हमारे जीवन में भी नई ताजगी और सकारात्मकता भर देती है। सखियों, माँ का दूध शिशु के लिए एक वरदान की तरह है, जिसे बदला नहीं जा सकता। नवजात शिशु के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध और शुरुआती 6 महीनों तक केवल माँ का दूध ही संपूर्ण एवं सर्वोत्तम आहार है। यह शिशु का रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और उसके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। सखियों, प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाले गाढ़े पीले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका भी है। यह शिशु के संवेदनशील पेट के लिए सबसे सुपाच्य होता है और गैस या कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज बच्चे को निमोनिया, डायरिया और कई तरह के संक्रमणों से सुरक्षित रखता है। सखियों, जन्म के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। उन्हें समय समय पर दूध पिलाएं। 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ साथ घर का बना आहार खिलाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त

अगस्त तक दुनिया भर के 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं के लिए माँ के दूध के महत्व को समझाना, स्तनपान को बढ़ावा देना और कामकाजी महिलाओं को इसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस साल की थीम इस बात पर जोर देती है कि माँ और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज, अस्पतालों और दफ्तरों में उन नियमों और सहायता प्रणालियों को मजबूत किया जाए जो स्तनपान को आसान बना देते हैं। कामकाजी महिलाओं को दफ्तरों में मैटरनिटी लीव यानी कि मातृत्व अवकाश और दूध पिलाने या स्टोर करने के लिए सुरक्षित स्थान जैसी सुविधाएं दिलाने की वकालत करना, समाज में सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान को लेकर हिचकिचाहट या शर्म को खत्म करना और इसे पूरी तरह सामान्य बनाना। सखियों, आइए इसी के साथ सुनते हैं आज का पहला गीत।

एमडी अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में हमने अभी जो गीत सुना, ये गीत आई मिलन की रात से लिया गया था। और अब आइए बात करते हैं मद्रासी कढ़ाई पर। सखियों, आज के समय में कढ़ाई, बुनाई और सिलाई केवल एक पारंपरिक हुनर नहीं रह गई है, बल्कि यह महिला और पुरुष दोनों के लिए आत्मनिर्भरता और रोज़गार का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। इस कला के ज़रिए लोग न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत भी हो रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग छोटे पैमाने पर अपना खुद का बुटीक या कढ़ाई सिलाई का केंद्र शुरू कर रहे हैं। आज पुरुष और महिलाएं दोनों ही फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल निर्माण और पारंपरिक कढ़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वेबसाइट की मदद से स्थानीय कारीगर अपने उत्पादों को सीधे देश विदेश के बाज़ारों में बेच पा रहे हैं।

बात करें मद्रासी कढ़ाई की तो दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु के पारंपरिक कपड़ा शिल्प और कला का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा है। हालांकि चेन्नई को मुख्य रूप से इसके मद्रास चेक सूती कपड़ों और कांजीवरम सिल्क के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की पारंपरिक सुई धागे की कारीगरी भी बहुत प्रसिद्ध है। मद्रास का प्रसिद्ध मद्रास चेक कपड़ा पूरी दुनिया में अपने रंग बिरंगे चौकोर पैटर्न के लिए जाना जाता है। आधुनिक फैशन में इस चेक वाले फैब्रिक के ऊपर बारीक धागों से हाथ की कढ़ाई की जाती है, जिससे कपड़े का लुक बेहद ही आकर्षक और एथनिक हो जाता है। इसमें अक्सर फूलों और पत्तियों के छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। आरी कढ़ाई जरदोजी भारी साड़ियों और शादी के ब्लाउज पर की जाती है। इसमें मोती, चमकीले सितारे और सुनहरे चांदी के धागों का बारीक इस्तेमाल किया जाता है। सखियों, वहीं टोंडा कढ़ाई जो पूरी तरह से हाथ से की जाने वाली बुनाई जैसी कढ़ाई है, जो दिखने में मशीन जैसी लगती है। इसमें सफ़ेद या ऑफ वाइट सूती कपड़े पर लाल और काले रंग के धागे से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। सखियों, मद्रासी कढ़ाई में सुई के काम की बारीकी देखने लायक होती है, जहां धागों को बहुत पास पास पिरोया जाता है। इसके डिज़ाइनों में दक्षिण भारतीय मंदिरों की गोपुरम, मोर, हाथी, कलम और आम के पत्तों की आकृतियां मुख्य रूप से उकेरी जाती हैं। कांजीवरम और अन्य दक्षिण भारतीय सिल्क साड़ियों पर सोने या चांदी के तारों और चमकीले रेशमी धागों से यह कढ़ाई की जाती है। देश के कई हिस्सों में महिलाएं घर बैठी मद्रासी कढ़ाई के ऑर्डर लेती हैं, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। आजकल शादियों के लहंगे जैसे जरदोजी और आरी वर्क की मांग बहुत ज़्यादा है, जिससे पुरुष और महिलाएँ कारीगरों को साल भर रोज़गार मिलता है। बिहार के भागलपुर सिल्क या सूती कपड़ों पर मद्रासी कढ़ाई का फ्यूज़न किया जा रहा है, जिसमें बाज़ार में इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सखियों, देश के अलग अलग राज्यों जैसे बिहार के पटना, खादी मॉल या सरस मेलों में दक्षिण की इस अनूठी कढ़ाई के कपड़ों को प्रदर्शित और बिक्री के लिए लाया जाता है। कई स्वयं सहायता समूह अब स्थानीय कारीगरों को दक्षिण भारतीय कढ़ाइयों की बारीकियां सिखा रहे हैं, ताकि वे अपने हुनर से आगे बढ़ सकें। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सखियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में ऐसी कई महान हस्तियां, ऐसी कई महान शख्सियतें रही हैं जिन्होंने देश और समाज के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। आज हम एक ऐसी ही महिला शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी। भारतीय इतिहास की उन महान महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की एक महान स्वतंत्रता सेनानी और महात्मा गांधी की पत्नी थी, जिन्हें पूरा देश आदर से बा यानी कि मदर्स ऑफ द आश्रम कहकर पुकारता था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में एक समृद्ध व्यापारी परिवार में हुआ था। ये केवल पत्नी होने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपने आप में स्वाभिमानी, साहसी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जन नेता थीं। उन्होंने 1904 में डरबन के पास फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना में मदद की और 1913 में भारतीय प्रवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन कर पहली बार जेल गईं। बिहार के चंपारण में नील किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने वहां की ग्रामीण महिलाओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया। सविनय अवज्ञा, बारडोली, करबंदी और राजकोट सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई। एकांत और उसी समय उन्हें एकांत की कारावास मिला। सखियों, कस्तूरबा का विवाह सन 1883 में कम उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी से हुआ था। शुरुआत में वह अनपढ़ थी, लेकिन गांधी जी के साथ रहते हुए उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और देश सेवा के मार्ग पर उनके साथ कदम मिलाकर चली। 1904 में डरबन के पास फिनिक्स

सेटलमेंट की स्थापना में मदद की। वहाँ भारतीय मजदूरों के अधिकारों और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1917 में इन्होंने चंपारण में महिलाओं और बच्चों के बीच स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें गांधी जी के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में नज़रबंद किया गया, जहां खराब स्वास्थ्य और दिल का दौरा पड़ने के कारण 22 जनवरी 1944 को उनका निधन हो गया।

के अंतिम दिनों में उन्हें गांधी जी के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में नज़रबंद किया गया, जहां ख़राब स्वास्थ्य और दिल का दौरा पड़ने के कारण 22 जनवरी 1944 को उनका निधन हो गया। सखियों, कस्तूरबा गांधी एक महान और साहसी महिला थीं। उन्होंने देश के आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया। इनका जीवन वाकई में हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा रही। और इसी के साथ सखियों, अब हमारा समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारी बहनें अपना प्रसारण सुन रही थीं, घर आंगन। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत, रीना सिन्हा की आवाज़ में। आइए सुन लेते हैं एक रोपनी गीत।

गीतों का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम। ई आकाशवाणी पटना। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय ले भोजपुरी में समाचार सुनी। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर भइल उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत कुमार के जीत मिलल बा। वो भाजपा के नीरज कुमार के 18,953 वोट के अंतर से हरा दिहले बाड़न। प्रशांत कुमार के कुल 63,203 वोट मिलल, जबकि भाजपा के नीरज कुमार के 44,250 वोट मिलल। उहमें राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,085 वोट के साथ तीसरा नंबर पर रहली। आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के समय में नया बदलाव कर गइल बा। अभी समाचार 7 अगस्त से हरेक दिन सांझ 6:05 के जगह सांझ के 5:30 से प्रसारित कल जाई। आज सावन के पहला सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक करे खातिर मंदिरन आ शिवालयन में सवेरे से ही भक्तन के भीड़ लागल बा। पूरा माहौल ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चारण से गूंज रहल बा। हमार संवाददाता बतौलन कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के वैकटपुर, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान आ सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत अलग अलग मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के पूजा अर्चना कर के जलाभिषेक कर रहल बाड़न। भागलपुर के सुल्तानगंज में भारी संख्या में कांवरियन उत्तरवाहिनी गंगा के जल लेवे खातिर पहुँच रहल बाड़न। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से बेसी के दूरी तय करके झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक करियन। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पूरा भइल 23वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत शानदार प्रदर्शन करत पदक तालिका में चौथा जगह हासिल कैले बा। भारत 13 सोना, 17 चांदी आ 9 कांसा पदक समेत कुल 39 पदक जीतलस। बिहार के 2 पैरा एथलेटिक झंडू कुमार भारोत्तोलन में कांसा पदक आ सुमोन राणा शॉटपुट में सोना के पदक जीतलन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन की ओर से सबन खिलाड़ियन के बधाई आ शुभकामना दिहले बाड़न। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के हरेक सड़क पर पैदल चले वाला लोगन खातिर सही तरीका से तय अतिक्रमण मुक्त जगह यानी फुटपाथ तय करे के निर्देश दिले बा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा आ आलोक आराधे के पीठ अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के संबंधित अधिकारी लोगन के जरूर निर्देश जारी करे के खातिर कहले बा, ताकि पैदल चले वालन खातिर तय कैल गई जगह के मोटर गाड़ी वाला लेन से साफ साफ अलग कैल जा सके आ ओकरा के अतिक्रमण से मुक्त रखल जा सके। पीठ कहलस कि ई लक्ष्य बिना कोनो बढ़न निवेश या निर्माण के हासिल कैल जा सकत बा। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू कैल गई नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के सफल बनावे में बिहार के सक्रिय भागीदारी की अपील कैले बाड़न। आज औरंगाबाद में आकाशवाणी से बातचीत में उजन प्रतिनिधियन से अपन अपन क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, परिचर्चा, संगोष्ठी आयोजित करे के आग्रह कैलन। डॉक्टर कुमार यह अभियान के जन आंदोलन के रूप देवे के गुहार भी कैलन। लोकसभा सर्वोच्च न्यायालय में जज के संख्या संशोधन विधेयक 2026 पास कर दिया लेवा। ये विधेयक के मकसद सर्वोच्च न्यायालय के जजन के संख्या अभी के 33 से बढ़ा के 37 कल जाए। एमे देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल निखन। केंद्रीय कानून आ न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश कैलन। वो कहलन कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रहल सुधार प्रक्रिया में एगो अहम कदम बा। यही साल मई महीना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च न्यायालय के जज की संख्या 33 से बढ़ा के 37 करे खातिर एगो अध्यादेश जारी कैले रहली। राज्यसभा आज सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्योग विकास संशोधन विधेयक 2026 पास कर दियलस। विधेयक पेश कर सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी कहलन कि एकर मकसद

0: एमएसएमई क्षेत्र खातिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के और इस सहज आ पूरी तरह से डिजिटल बनावल, भुगतान में देरी कम कैल, कारोबार सुगमता बढ़ावल और कुछ प्रावधानन के अपराध मुक्त कैल बा। विधेयक के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमम एमएसएमई से कैल जाए वाला खरीदारी के भुगतान टी रेट्स के माध्यम से तय करे के व्यवस्था और ही मजबूत कैल गेल बा। एकरा से छोट आ मझोला उद्यम के समय पर भुगतान मिले या ओहन के नकदी उपलब्धता में सुधार होके के उम्मीद बा। राज्य में मानसून के सक्रिय रहे से पानी बरसे के सिलसिला जारी बा। राजधानी पटना समेत राज्य के ज्यादातर जिलन में आज सवेरे झमाझम बारिश भइल। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान रोहतास जिला में भारी बारिश रिकॉर्ड कल गई। विभाग आज कैमूर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सुपौल जिला में भारी बारिश के चेतावनी जारी कैले बा। एकर साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दीनू भाई सब श्रोता भाई बहन के राम राम। श्रोता सब है, सावन के पहला सोमारी आज है। सावन महीना चढ़ते जैसे बुझाला कि परब के बाढ़ आ गई। एकरा अलावे आदमी के मन भी आध्यात्मिकता के प्रति थोड़ा जागेला। आज हमनी का देख रहल बनी जा कि कैसनों शिवालय छोट से लेके बड़ तक अतना बढ़िया सजल बा कि जगमग कर रहल बा। आ भक्त त रात ही से जल चढ़ा रहल बा। श्रोता भाई बहन, सावन के पहला सोमारी के हार्दिक शुभकामना। देखी हमनी के आपस में मिलजुल के हमेशा रहे के चाहिए। परब त्योहारी सिखैबो करेला। अभी ये देखतनी तस जे भी बा गेरुआ रंग में रंगाइल बा, के बड़ बा के छोट बा तनिको निखे बुझात। बाबा के दरबार में जे भी जाता सब बरोबर बा। श्रोता भाई बहन, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले चर्चा हुई विषय बा स्तनपान क्यों है जरूरी। इस समय 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनावल जा रहल बा। एकरा बाद केसरी नंदन भगत आ साथी लोग के गावल लोकगीत के आनंद लिहल जाई। एकरा बाद वैष्णवी भारद्वाज से वार्ता सुनल जाई। विषय रही बच्चों में कुपोषण और उनका समाधान। आज एक जानकारी के विषय रही खेती के साथ बाग अवश्य लगाएं। अंत में मौसम पूर्वानुमान के साथे साथे कुछ सामयिक सलाह भी दिल जाई। श्रोता भाई बहन, ई रहल कार्यक्रम के रूपरेखा। तो जैसन कि हम कहनी हाँ, यह समय 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनावल जा रहल बा। स्तनपान सप्ताह मनावे के लोग के एह प्रति आकर्षित करे के का उद्देश्य हो सकेला, एकरा बात पर सबका विचार करे के चाहिए। श्रोता भाई बहन, कौनो जीव होके ओकर बच्चा के जब ओह बच्चा के जब जन्म होला ओह समय से लेकर कुछ समय तक स्तनपान बहुते जरूरी होला। स्तनपान सप्ताह मनावे के पीछे इहो उद्देश्य बा

स्तनपान से शब्द से कुछ लोग के भ्रांति मन में ऐसा बैठल बा कि ये सही नहीं है। यह भ्रांति के दूर करे के भी उद्देश्य बा। श्रोता भाई बहन, स्तनपान काहे जरूरी बा, स्तनपान केकरा खातिर जरूरी बा, इस सब बात के जानकारी सबका होखे के चाहिए। कहे कि बच्चा जब जन्म लेला ओह समय मतारी के से स्तनपान करावल जाला, ऐसे कि ओह समय के गाढ़ा आ पीला दूध जो निकलेला उ कई गो रोग से बचावे के क्षमता रखेला। ओह बच्चा में के शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ावेला, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला, जौना से कि बच्चा ओह रोग से दूर रहेला। एकरा साथे साथे इहो देखल गइल बा कि बच्चा के शारीरिक आ मानसिक विकास खातिर स्तनपान बहुते जरूरी बा। स्तनपान जतने जरूरी एगो बच्चा खातिर बा, उतने जरूरी ओह बच्चा के मतारी खातिर बा। श्रोता भाई बहन, स्तनपान खातिर जितना भी भ्रांति हमनी का मन में होके ओकरा के निकाल देवे के चाही। आईगुड़े बात जाने के चाही कि स्तनपान सबसे जरूरी बा आ बहुते जरूरी बा। स्तनपान हर जीव खातिर जरूरी बा। घर में जे भी मवेशी रख ले बा, गाय भैंस रख ले बा, बियला पर सबसे पहले आदमी वह बच्चा के पकड़ के थान में मुँह लगावेला कि ओकरा के वो पहला दूध के आहार मिलो। एकरा पीछे सबसे बड़ा कारण यह बा कि ओह दूध में जवन ताकत बा, ओह दूध में जवन रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ावे वाला ताकत बा, उ कहीं नहीं है। श्रोता भाई बहन, मतारी के आ बच्चा से स्तनपान जब होला तो ओह समय में एगो आत्मिक सुख दोनों के मिलेला आ दोनों के बीच में रिश्ता के भी प्रगाढ़ता बनेला। हमनी के हर हाल में यह बात के स्तनपान काहे जरूरी बा, यह बात के जाने के भी चाहिए आ दूसरा के जनावे के भी चाहिए कि काहे जरूरी बा। श्रोता भाई बहन, अब हमनी का एगो लोकगीत सुनल जाओ। आज हमनी का लोकगीत सुनल जाए केसरी नंदन भगत आ साथी लोग से, तो सुन लिया जाओ।

श्रोता भाई बहन, अभी हमने का केसरी नंदन भगत आ साथी लोग की गावली लोग की सुननी जा, बड़ा निमन लागल। इतना निमन लोकगीत खातिर केसरी नंदन भगत आ साथी लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, स्तनपान क्यों है जरूरी, यह विषय पर चर्चा भइल आ एकरे से जुड़ल और भी विषय बा, जैसे बच्चा में कुपोषण, बच्चन में कुपोषण काहे आवेला, बच्चन के कुपोषण दूर करे के का उपाय बा, ये सब बात पर हमने के विचार करे के चाहिए। जब कोई भी स्त्री गर्भवती होली उस समय उनका के जितना जैसन खान पान के आवश्यकता होला, अगर वैसन खान पान मिली तो बच्चा भी स्वस्थ रही। अगर उचित खान पान रहन सहन उचित रहन सहन उचित खान पान अगर ना मिली तो जच्चा आ बच्चा दोनों खातिर हानिकारक रही। श्रोता भाई बहन, एगो छोट बच्चा जोना घरी जन्म लेलस वही घरी सबसे जरूरी होला मतारी के दूध। एकरा बाद जैसे जैसे वो बड़ होखत जाला वैसे वैसे ओकरा भोजन में थोड़ा थोड़ा बदलाव करे के पड़ेला, थोड़ा मात्रा बढ़ावे के पड़ेला। ये सब कुछ अगर समय पूर्वक ना हुई आ निमन से ना हुई तो समझ ली कि ओकर रिजल्ट भी निमन ना मिली। तो बच्चन में कुपोषण काहे फैलता, एह में हमनी के का करे के चाहिए, ये बात पर जरूर विचार करे के चाहिए। आई हमनी का जानल जाओ एगो वार्ता के माध्यम से वैष्णवी भारद्वाज से कि बच्चा में कुपोषण के का कारण बा, आयकर का समाधान बा, जानल जाओ।

यह बात हम सभी जानते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन अगर वही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर रह जाएं, तो हमारे देश का भविष्य भी कमजोर हो जाएगा। आज भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बार बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते या घर में पर्याप्त संतुलित आहार नहीं मिल पाता उन्हें। कभी कभी बीमारियां भी इसका कारण बनती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS-5 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 35% बच्चे कम वजन वाले हैं, यानी कि अंडरवेट हैं, और 32% बच्चे अविकसित यानी कि स्टंटेड हैं, और लगभग 19% बच्चे कमजोर यानी कि वेस्टेड पाए गए हैं। कई बार बच्चे उम्र के हिसाब से ना तो वजन में पूरे होते हैं और ना ही लंबाई में। इसका सीधा असर उनके पढ़ाई, खेल और आगे की जिंदगी पर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषित है? अब सवाल उठता है कि यह कुपोषण होता क्या है? कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन का अर्थ है शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त और संतुलित पोषण ना मिल पाना। बच्चों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर होती है क्योंकि इससे उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में कुपोषण के कुछ मुख्य लक्षण क्या हैं। पहला लक्षण जो बहुत ही आसानी से दिख जाता है वो है कमजोर शरीर, फिर सुस्ती। अगर बच्चा बहुत सुस्त दिख रहा है तो हो सकता है कि वो बच्चा बहुत कुपोषित हो। बार बार बीमार पड़ना या पढ़ाई में मन ना लगना, यह भी कुपोषण के कुछ मुख्य लक्षण हैं। कुपोषण के प्रभाव, शारीरिक विकास में बाधा। बच्चों के अगर शारीरिक विकास में बाधा आती है, जितना उनका विकास जिस समय पर होना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा है, यानी कि वो बच्चा कुपोषित है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, पढ़ाई और सीखने की क्षमता में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि, यह सभी कुपोषण के प्रभाव हैं। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कुछ मुख्य कारण यह है कि असंतुलित आहार। अगर बच्चा संतुलित आहार नहीं खा पा रहा है, अगर उसे संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो वो कुपोषित होगा। गरीबी और खाद्य असुरक्षा इसका एक और मुख्य कारण है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, बार बार बीमार पड़ना जैसे डायरिया या इन्फेक्शन, साफ सफाई और स्वच्छता की कमी, स्तनपान और पूरक आहार में लापरवाही, पौष्टिक आहार की कमी, भोजन की अनियमितता, माता पिता में पोषण संबंधित जागरूकता की कमी। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में कुपोषण के कुछ प्रकार क्या हो सकते हैं। तो पहला है अल्प पोषण, जिसे हम अंडर न्यूट्रिएंट कहते हैं अंग्रेजी में। अल्प पोषण में बच्चों का जो वजन और लंबाई उनके उम्र के हिसाब से कम रहती है। फिर आता है सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे आयरन, आयोडीन, विटामिन ए, जिंक आदि की कमी होना। फिर आता है अधिपोषण, जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका अर्थ है अत्यधिक वसा यानी कि फैट या ऊर्जा युक्त भोजन के कारण मोटापा, जो शहरी क्षेत्रों में बढ़ती समस्या पाई गई है। श्रोता मित्रों, बच्चों में के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की एक निश्चित मात्रा हर दिन ली जानी चाहिए। इसे हम RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए मैं आपको कुछ मुख्य आयु वर्गों के अनुसार RDA के बारे में जानकारी देती हूँ। जैसे कि 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा 160 किलो कैलोरी प्रतिदिन, प्रोटीन 16.7 ग्राम प्रतिदिन, कैल्शियम 600 मिलीग्राम, आयरन 9 मिलीग्राम, विटामिन ए 400 माइक्रोग्राम। अगर इतने मात्रा में रोज 1 से 3 साल का बच्चा अगर आहार ले तो वो बिल्कुल पोषित रहेगा, वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा 1350 किलो कैलोरी प्रतिदिन, प्रोटीन 20.1 ग्राम प्रतिदिन, कैल्शियम 600 मिलीग्राम, आयरन 13 मिलीग्राम, विटामिन ए 400 माइक्रोग्राम। 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा 1690 किलो कैलोरी प्रतिदिन, प्रोटीन 29.5 ग्राम प्रतिदिन, कैल्शियम 600 मिलीग्राम, आयरन 16 मिलीग्राम, विटामिन ए 600 माइक्रोग्राम। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने घर के खाने में दाल, हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडा और अनाज को शामिल करना चाहिए। अब सवाल आता है कि जिन परिवारों की आय सीमित है, वे इसे कैसे पूरा करें? इसका एक सरल और प्रभावी समाधान है न्यूट्री गार्डन। भारत सरकार और कई राज्य सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और पंचायत स्तर पर न्यूट्री गार्डन या

0: यानी पोषण वाटिका को बढ़ावा दे रही है। न्यूट्री गार्डन में हरी सब्जियां, फलदार पौधे और औषधि पौधे उगाए जाते हैं जो पोषण से भरपूर हों, जैसे पालक, मेथी, सरसों। यह सभी आयरन और विटामिन के लिए उगाए जाते हैं। सहजन, जिसको हम मोरंगा कहते हैं, टमाटर, गाजर विटामिन ए और विटामिन सी के लिए उगाया जाता है। नींबू, अमरूद, ये दोनों रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाने की क्षमता रखता है। मूली, गाजर, शलजम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इससे ना केवल बच्चों को ताजा और सस्ता पौष्टिक आहार मिलता है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को भी इसकी जानकारी और प्रेरणा मिलती है। आप अपने घर में भी छोटे स्तर पर न्यूट्री गार्डन शुरू कर सकते हैं। गमलों में पालक, मेथी, टमाटर, धनिया, मिर्ची आदि उगाना आसान है। इससे बच्चों को हर दिन हरी सब्जियां उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पूर्व में हम इसे मिड डे मील योजना के नाम से जानते थे, आंगनवाड़ी सेवाएं, ICDS प्रोग्राम, पोषण अभियान, इन सब का उद्देश्य है बच्चों को पर्याप्त और संतुलित आहार उपलब्ध कराना। लेकिन इसके लिए माता पिता, शिक्षक और समुदाय के सभी लोगों को सक्रिय भागीदारी करनी होगी। यह समझना जरूरी है कि केवल खाना खिलाना ही पर्याप्त नहीं है। बच्चे क्या खा रहे हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, यह ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे केवल चावल या रोटी खा रहे हैं लेकिन दाल, सब्जी, दूध नहीं ले रहे, तो शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और मिनरल नहीं मिल पाएंगे। बच्चों में खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, भी एक बड़ी समस्या है, जिसे आयरन युक्त भोजन देकर दूर किया जा सकता है। समाधान के तौर पे कुछ सुझाव देना चाहूंगी मैं। बच्चों को हर दिन 3 समय भोजन के साथ 2 हल्के स्नैक्स दें। घर में मौजूद सामग्री जैसे मूंगफली, चने, गुड़ और हरी सब्जियों से पौष्टिक भोजन बनाएं। बच्चों को बाहर के तले भुने या पैकेट में जो खाना बाहर से आता है, उसके बजाय घर का बना ताजा खाना दें। स्कूल और आंगनवाड़ी में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान दें। बच्चों की वृद्धि और वजन नियमित रूप से मापन करें। कुपोषण का समाधान किसी एक व्यक्ति या संस्था के बस की बात नहीं है। इसके लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। जागरूकता, समझदारी और छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पांख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
3: श्रोता भाई बहन, अभी हमनी का वार्ता सुनत रही जा वैष्णवी भारद्वाज से। विषय रहा बच्चों में कुपोषण और उसका समाधान। बड़ा बढ़िया से यहाँ के बतौनी है कि कुपोषण काहे होला, आयकरा के दूर करे के का उपाय बा। इतना बढ़िया बात बतौला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता भाई बहन, अब एक जानकारी के विषय बा, खेती के साथ साथ बाग जरूर लगाई। देखी धान गेहूँ तो पैदा जरूर करता नहीं जा हमनी के, फकीर धाने गेहूँ से सब आवश्यकता के पूर्ति हो जाए ये संभव नहीं है। आज भी किसान के बहुते खेत ऐसन बा कि कोनो खाल बा तो कोनो ऊंच बा। खाल खेत बा में मछली पालन तो हो सकेला, मछली पालन तो करके 2 गो पैसा तो कमा सकीला, लेकिन आम खाए के मन करी, अमरूद खाए के मन करी, उ कहाँ से मिली? ओकरा खाई तो बाजार जाए के पड़ी। अब बाजारों में कोई पैदा करता तबे न बिकाता। श्रोता भाई बहन, हमनी के भी चाही कि अगर जगह तनियो मनी होखे तो ओकरा पर जरूर लगाई। आ खेती के संगे संगे बारी तो कहले बटुए खेती बारी। श्रोता भाई बहन, खेती धान गहूँ से सिर्फ पेट भरेला,

लेकिन उहे अगर बाग बगीचा लगावतन जा तो एकरा से कई गो आवश्यकता के पूर्ति होला। बाग बगीचा से ताजा ताजा फल मिलेला, कुछ घर में केवाड़ी लगावे के बा चाहे इमारत में कोनो काम करे के बा तो ओकरा खातिर लकड़ी मिलेला, वातावरण के साफ रखेला आ सबसे तो एगो जौन अनमोल चीज देला जीवनदायिनी ऑक्सीजन जौन कि हमनी के सांस के काम में आवेला, एकरा से बढ़ के कुछ ना हो सके। श्रोता भाई बहन, आज के ऑक्सीजन के कमी पेड़ पौधा ही पूरा करेला। ऑक्सीजन ना रही अगर पेड़ पौधा ना रही। हमनी के हर हाल में पेड़ पौधा लगावे के चाही। पेड़ पौधा में इमारती लकड़ी वाला पेड़ अलग बा, फलदार वृक्ष अलग बा, साथे साथे औषधीय पेड़ भी बहुत सा बा जौना के रुआ लगा के आ कम समय में नीमन लाभ उठा सकीला। हमनी के हर हाल में बाग बगीचा के तरफ आकर्षित होके के चाही, बाग बगीचा लगावे के चाही, ताकि अगर हमनी के ना तो कम से कम आगे आवे वाला पीढ़ी के भी तब फल मिल सके। श्रोता भाई बहन, अब हमनी का कुछ सलाह जानल जाओ जौन कि यह समय जरूरी बा कृषि क्षेत्र खातिर। जैसे जरा खेती करे जाता तो सबसे पहले अब माटी के जांच करा ले अगर आ तब खेती करे तो बहुत फायदा हुई। भूमि तैयारी के विशिष्ट सलाह जानी, खरीफ प्याज के रुपाई खातिर खेत के तैयारी आसमान साफ रहे पर ही करी। खेत के जुताई के समय प्रति हेक्टर 150 से 200 क्विंटल निमन से सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग करी। मानसून के दौरान प्याज के नर्सरी के खर पतवार से मुक्त रखी। जहां आवश्यकता होके ओजा समय पर निराई गुड़ाई भी जरूर करी। तेज धूप से पौधा के सुरक्षा खातिर नर्सरी जहां लगौले बनी ओकरा ऊपर 6-7 फीट ऊंचा अगर शेड नेट लगा देतनी तो नर्सरी के जौन पौधा बा उ और बढ़िया रही। अगर पशुपालन कैले बानी जैसे गाय रखले बानी अगर तो पशुअन में ए समय PPR, FMD खुरपका मुँहपका आ HS गलघुटुई रोग के खतरा अधिक हो जाला। पशु के समय पर टीकाकरण कराई, उनका के स्वच्छ आ सूखा जगह पर बांधी, बीमार पशु के स्वस्थ पशु से अलग रखी। रोग के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें आ पशु के अनावश्यक कहीं आवे जाए पर रोक लगाएं। बागवानी विशिष्ट सलाह जानी, अगर आम के पौधा लगौले बनी आ चाहे लगावे के तैयारी करतनी, आम के पौधा के रोपण के सबसे उपयुक्त समय चल रहल बा। कलमी पौधा के रोपाई 10x10 मीटर आ बीजू पौधा के रोपाई 12x12 मीटर के दूरी पर करे के चाही। सघन बागवानी खातिर 5x5 मीटर आ आम्रपाली खातिर 2.5x2.5 मीटर दूरी रखे के चाही। फलदार वृक्ष के प्रति वर्ष 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास आ 80 से 100 किलोग्राम सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग जरूर करे के चाही। श्रोता भाई बहन, अगर मकई के खेती कैले बनी तो खरीफ मकई घरी जौन बोल गई बा तो बोला के 15 से 20 दिन के बाद निकौनी जरूर कर दही। मक्का में धन बाल निकले के जब समय होके वह समय नेत्रजन के उपरिवेशन जरूर करी। धान के फसल खातिर कम वर्षा के कारण धान के खेत में के जौन खर पतवार बा ओकर वृद्धि बढ़ रहल बा, अधिक हो रहल बा। किसान के समय समय पर खर पतवार निकाले के सलाह दिहल जा रहल बा। जौना खेत में उचित वायु संचार, नमी आ पोषक तत्व के बेहतर उपयोग हो सके। जौना खेत में धान रोपाई के 5-7 दिन हो चुकल बा ओकरा में खर पतवार नियंत्रण खातिर प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में ब्यूटा क्लोर 3 लीटर चाहे प्रेटिला क्लोर 1.5 लीटर चाहे पेंडी मेथालिन 3 लीटर घोल बना के छिड़काव जरूर करें। अब चले चले क्या बेरी

मौसम के हालचाल जान लिया जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि 1 से 5 अगस्त के दौरान आसमान में काला बादल छोले रही। जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले या हल्का वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90%, दोपहर में 55 से 60% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दक्षिण पूर्वा हवा चले के अनुमान बा। श्रोता भाई बहन, यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार आ अब घड़ी कह रहल बा रउआ सभी से विदा लेब के। त चले चले के अबेरी दिनू भाई के तरफ से गाँव घर कार्यक्रम सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के राम।

यह था ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्मी नगमे।

कार्यक्रम का पहला नगमा आपने गंगा जमुना फिल्म से सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और श्रेया घोषाल की। राकेश दीप के लिखे गीत की तर्ज बनाई थी शिवम बागची ने। श्रोताओं, आइए सुनते हैं लक्ष्मण रेखा फिल्म का एक गीत, उदित नारायण और अन्वेषा के युगल स्वरों में। डॉक्टर सागर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है सतीश अजय ने।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति फिल्म है कोठा जहां प्यार बिखेरा। गायक कलाकार हैं आलोक पांडे, राजेश मिश्रा ने गीत लिखा है, धनंजय मिश्रा ने स्वरबद्ध किया है।

तो श्रोताओं, अभी आपने आलोक पांडे की आवाज़ में राजेश मिश्रा का लिखा और धनंजय मिश्रा का स्वरबद्ध किया गीत सुना। फिल्म थी कोठा जहां प्यार बिकाला। और इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने आलोक पांडे की आवाज़ में राजेश मिश्रा का लिखा और धनंजय मिश्रा का स्वरबद्ध किया गीत सुना। फिल्म थी कोठा जहां प्यार बिकाला। और इन्हीं गीतों के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

बिहार और झारखंड के युवा साथियों कैसे हैं? एक बार फिर से आ गया आप सबों का अपना दोस्त राजेश, आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लेकर कार्यक्रम बुनियाद। जी हां, सोमवार का दिन है और आज के दिन इसी मीटर पर आकाशवाणी के आप सुनते हैं बुनियाद। जी हां, बुनियाद एक ऐसा कार्यक्रम जो आप युवाओं के लिए एकदम हिट साबित हो रहा है। हम आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं और जिस पर जो पूरी इमारत लिखी जाए ना, वो एकदम मुकम्मल हो। अच्छा रोजगार, अच्छा पैसा, अच्छी जिंदगी, सब कुछ आपको मिल सके। और इस बुनियाद कार्यक्रम में हम बातें करते हैं रोजगार, जी हाँ, रोजगार की। और रोजगार मिलती है ज्यादातर, हाँ, आसानी से प्रोफेशनल पढ़ाई करके, विशेषज्ञता हासिल करके, टेक्निकल पढ़ाई करके। और एक मेरा ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है ना, बहुत पॉपुलर हो रहा है कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। अगर जो आपने की टेक्निकल पढ़ाई, तो आपके जीवन में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, और ये बुनियाद कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं एक वैसे संस्थान, एक वैसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो टेक्निकल पढ़ाई का हब है, और ये अपने बिहार के जमुआर में है, रोहतास में है, सासाराम में है, और जिसका नाम है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। और जो अगर फोन करना चाहें, तो सबसे पहले हम एक टोल फ्री नंबर है वो बता रहे हैं। नंबर नोट करें, 1800 121 0051, 1800 121 0051। और दूसरा जो नंबर है मोबाइल का, वो नंबर है 9431899002। पिछले सप्ताह अवनीश रंजन थे हमारे साथ और हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स की चर्चा की थी, बीएड स्पेशल एजुकेशन। हमने कहा बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड सब कोई करना चाहता है ना, करना चाहता है और शिक्षक बनना चाहता है या फिर आगे निकलना चाहता है, लेकिन बीएड स्पेशल एजुकेशन की बातें हमने की थी जो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में होता है। पूरे बिहार और झारखंड से रिस्पांस आए हैं। एक साथी ने जंदाहा वैशाली से हमें लिखा है, जिनका नाम है देवेंद्र प्रसाद। जी हाँ, अभी इन्होंने इंटरमीडिएट पास आउट किया है बायोलॉजी के साथ और अपने लिए एक अच्छे कोर्स की तलाश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जब तक आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारियां देते, मैं फॉलो नहीं कर पाया, कृपया उसे एक बार फिर से बता दिया जाए। इसके अलावे भागलपुर से, पूर्णिया से, बक्सर से और भी बहुत जगह से फोन कॉल आए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपके डिमांड पर हम एक बार फिर से अवनीश रंजन जो हमारे साथ बने हुए हैं।

0: कार्यक्रम में हम उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में हमें जानकारियां दें एक बार फिर से, जिससे हम आपकी मदद कर सकें।
1: अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के जो भी टीचर होंगे वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
0: बहुत खूब, आपने सारी चीजें एक बार फिर से अच्छे से बता दी और हमें उम्मीद है कि पूरा बिहार और झारखंड जो सुन रहा है और बीएड करना चाहता है एक बार जरूर बीएड स्पेशल एजुकेशन की तरफ देखेगा। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। आप जो कॉमन आदमी है उसके लिए, कॉमन बच्चे हैं उसके लिए तो काम कर सकते हैं, चैलेंज बच्चों या डिजेबल बच्चों के लिए भी आप काम कर सकते हैं। सर्विस की भावना ज्यादा है, सारा कुछ इसके अंदर है। जी हाँ, ये गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में ये कोर्स होता है। हम नंबर बता दे रहे हैं, आप चाहें तो बात कर सकते हैं। नंबर जो टोल फ्री नंबर है हमारा 1800121051 1800121051, और दूसरा जो नंबर है 9431899002, ये नंबर है। आगे बढ़ें बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, आगे बढ़ें उससे पहले आपको याद दिला दें युवा साथियों कि हमने 3 नए कोर्सेज की चर्चा की थी जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, दूसरा कोर्स था परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और तीसरा कोर्स था बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। इसकी चर्चा हमने इस बुनियाद कार्यक्रम में की थी, आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं लेकिन सच बताऊं तो जितना आना चाहिए उस हिसाब से नहीं आए, शायद आप ये कोर्स को समझ नहीं पाए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन ये हॉट केक है, एक बार फिर से बता देते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये इसकी प्लेसमेंट होती है। इसी तरीके से परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है और बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज है, सीट बहुत कम है। इसी नंबर 1800121051 या 9431899002 इस नंबर पर आप बात करके जानकारियां ले सकते हैं। बहरहाल अवनीश जी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में जरा लोगों को बताइए, वहां ये कोर्स होता है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें जितनी जानकारी हम दे सकते हैं गागर में सागर भर दीजिए।
1: मैं बताना चाहूंगा कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास जिले, बिहार के रोहतास जिले के जमुआ में स्थित है और ये करीब 100 एकड़ में फैला हमारा यूनिवर्सिटी है जिसमें कि बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज संचालित होते हैं, जिसमें हमारा ये फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस भी है। फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के ही अंतर्गत ये 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन के साथ, 2 विशेषज्ञता के साथ बीएड की पढ़ाई होती है। एक इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी जिसे हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं और दूसरा हियरिंग इंपेयरमेंट, मतलब जिनको सुनने या बोलने में समस्या है बच्चों की, उनके शिक्षक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद जो भारत सरकार की वैधानिक संस्था है वहां से मान्यता प्राप्त है हम लोगों का यहाँ। और इसके अलावा हमारे जो फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स को, टीचर ट्रेनीज को पढ़ाते हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके पास अच्छी डिग्री है और इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। साथ साथ हमारे हमारे ही कैंपस में नारायण वर्ल्ड स्कूल है, जो चूंकि टीचिंग प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है टीचर्स को अपने ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको प्रैक्टिस के लिए भी हमारे स्कूल

0: कैंपस में स्कूल है, इंक्लूसिव स्कूल है, जिसमें कि सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ते हैं। हमारे कैंपस में नारायण केयर बाल पुनर्वास केंद्र भी स्थापित है, जहां पे इस तरह के बच्चे थेरेपी के लिए आते हैं और स्पेशल एजुकेशन के लिए आते हैं। जब ऐसे सेटअप में, स्पेशल सेटअप में, जहां इन बच्चों को अलग से स्कूल के अलावे भी अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है तो उस तरह के सेंटर्स हैं। तो जो स्टूडेंट यहां एडमिशन लेंगे बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले कोर्स में, उनको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन के लिए लैब हमारे पास अवेलेबल है, हमारे यहाँ बच्चे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर बच्चे, उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन असेसमेंट करने के लिए भी व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैंपस में ही हॉस्टल अवेलेबल है, लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल है। हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के भोजन उपलब्ध कराने वाली मेस है, जिसमें कि जो भी बच्चे रहते हैं हॉस्टल में उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, ग्रीन इन्वायरमेंट मिलता है, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा वैसे लोगों से जिन्होंने प्लस टू किया है इस बार साइंस या आर्ट्स में, वो एक बार हमारी यूनिवर्सिटी को विजिट करें, हमारे वेबसाइट पर भी जाएँ और फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस को के साइट को देखें और हमारे प्रोग्राम्स को समझें, हमारे पूरे फैसिलिटी को एक बार देखें। और मैं अपील करूंगा कि वो एडमिशन अगर लेते हैं तो मैं अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूशन के, अच्छी यूनिवर्सिटी को में एडमिशन लेंगे और उनकी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ डिग्री लेकर निकलेंगे। जब वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट उनका बहुत स्ट्रांग होगा और जहां चाहे वो जॉब कर सकते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं।
1: मजा आ गया लवनीश जी, वाह, बहुत पूरी तरीके से आपने खोल के बता दिया। लेकिन आपने बाद में रोजगार की बात कही, यहाँ एक सहज जिज्ञासा है, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रोजगार सारे यूथ चाहते हैं, गार्जियन भी चाहते हैं, अगर हमारा बेटा भी हो तो हम चाहेंगे पढ़ने के बाद रोजगार लगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या व्यवस्था है?
0: जी, हमारे यहाँ अलग से एक प्लेसमेंट सेल है जिसमें कि हमारे वैसे लोग जो हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं उनके लिए हम लोग प्लेसमेंट के लिए ड्राइव चलाते हैं। बहुत सारी एजेंसीज हैं खासकर जो इस फील्ड में काम कर रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज है जो हमारे यहाँ आती है और इन लोगों के का इंटरव्यू लेके और उनके को सेलेक्ट करके और अपने यहाँ ले जाती है और अच्छे पैकेज पे उनको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ कैंपस में नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी है, तो क्या आप अपने बच्चों को या आपके यहाँ से जो पढ़ के निकले आप अपने यहाँ भी प्लेसमेंट देते हैं उनको?
0: जी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जो हमारे बच्चे हमारे कैंपस में काम करना चाहते हैं तो हम उनको चांस देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमने अपने बच्चों को एक हाई एजुकेशन दिया है, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे हम लोगों के यहाँ पहले ऑब्जर्व हों। अगर वो अपने एरिया में काम करना चाहते हैं तो हम लोग उनको वो भी मदद करते हैं कि आप जिस राज्य में या जिस शहर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, हम लोग उनको वहां भी रेफर करते हैं और वहां जाके वो जॉब करते हैं।
1: अवनी जी, रोजगार से संबंधित एक और हम जानकारी चाहते हैं कि स्कूलों में सब बच्चे एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बीएड स्पेशल एडुकेशन वालों की बढ़ी है क्या?
0: सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
1: वाह, बहुत खूब, थैंक यू अविनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आए तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में। तो साथियों, पूरा बिहार और झारखंड आपने सुना पहले कोर्स के बारे में, बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन के बारे में, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के बारे में और लंबी बातचीत हुई जॉब को लेकर। हर तरफ जॉब ही जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर सकते हैं इस नंबर पर 1800121 0051 1800121051 और दूसरा नंबर 9431899002 ये नंबर है। और इंटरेस्टेड होना भी चाहिए बीएड स्पेशल एडुकेशन के लिए। और इसके अलावे आज ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आ गई है युवा साथियों, बस गौर करने की जरूरत है आपका इंटरेस्ट किस तरह

0: है ये जानने की जरूरत है। अपने बिहार में टेक्निकल हाँ पढ़ाई वाला हाँ यूनिवर्सिटी है जहाँ 13-14 अपॉर्चुनिटी है। जैसे अगर आपने बायोलॉजी के साथ किया है तो मेडिकल है, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसके अलावा फार्मेसी है, पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, आप जा सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान देने की। और नंबर वही 1800121051 और 9431899002। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार और झारखंड के बच्चों के लिए राजेश को लेकर आने का मौका दिया। चलते हैं, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: बुनियाद श्रोताओं, अभी आपने यह प्रायोजित कार्यक्रम सुना। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज दिनांक 3/8/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में मल्टीपर्पज हॉल सासाराम में चेहल्लुम पर्व 2026 के अवसर पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चेहल्लुम पर्व आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव एवं शांति का प्रतीक है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी पूर्ण संवेदनशीलता, सतर्कता एवं समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि जिले में पर्व पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो। उन्होंने निर्देश दिया कि सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों करबला एवं पहलाम स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा किसी भी छोटी घटना या विवाद को भी गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि चेहल्लुम पर्व के अवसर पर निकलने वाले सभी ताजिया जुलूस केवल सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत पूर्व स्वीकृत एवं निर्धारित मार्ग से ही संचालित होंगे। किसी भी परिस्थिति में जुलूस के मार्ग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। जुलूस में डीजे का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त अवैध हथियार, उत्तेजक नारे, अशोभनीय प्रदर्शन, पटाखों के उपयोग अथवा किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधि पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी चिन्हित स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहकर स्थिति पर सतत निगरानी बनाए रखें। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में 166 जगहों, डेहरी अनुमंडल क्षेत्र में 96 जगहों और विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में 103 जगहों पर दंडाधिकारी तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही सासाराम शहर में 8 दंडाधिकारी एवं 8 पुलिस पदाधिकारी पालीवार वाहन से गश्ती करेंगे। इसके अलावा अनुमंडलवार संवेदनशील प्रखंडों में

अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। चेहरुम पर्व पर किसी भी सूचना के लिए समाहरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 06184226072 या 226093 है। डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी स्वर्गीय विमल कुमार के असामयिक निधन पर आज समाहरणालय रोहतास स्थित डीआरडीए कक्ष में जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। उनके असामयिक निधन से जिला प्रशासन एवं नगर परिषद डेहरी को अपूर्णीय क्षति हुई है। शोक सभा में उपस्थित जिला पदाधिकारी ने उनके दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय विमल कुमार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण भाव से किया। उनके योगदान को सदैव स्मरण रखा जाएगा। वहीं समाहरणालय कैमूर से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने हेतु जिला पदाधिकारी कैमूर ने की समीक्षा बैठक एवं योजना को गति देने का दिया निर्देश। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

तो श्रोताओं, इसी के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा। नमस्कार, ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक?
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सुगंध क्या हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।
0: पिन दे।
4: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
6: इसलिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
5: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
6: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
7: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
9: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
8: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
12: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
13: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते। भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा, पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज, मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मतगणना के पहले राउंड से ही जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बढ़त बना ली थी। यह बढ़त 31वें राउंड तक बरकरार रही। उन्हें कुल 49.23% मत मिले। भाजपा के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 34.4% मत मिला। तीसरे स्थान पर रही राजद की रेखा कुमारी को 10.4% मत मिला। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। भाजपा को 35 वर्षों बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उपचुनाव में कुल 34.31% मतदान हुआ था, जो वर्ष 2010 में अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र का अब तक का सबसे कम मतदान प्रतिशत है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर उपचुनाव में जनसुराज की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और रंग अबीर लगाकर बधाई दी।

0: पार्टी के सूत्रधार और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के लिए बांकीपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव का परिणाम एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।
1: बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए।
0: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है।
2: जिन लोगों ने हमारे लिए ये जीत दिलाई है, बांकीपुर की जनता का एक स्वर से हम सब जनसुराज के लोग धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बांकीपुर में लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। जनता बहुत ज्यादा दुखी थी, उन्होंने इस बार मन बना लिया था कि इस मौके पर बदलाव लाना जरूरी है, नहीं तो वो संकेत नहीं दे पाएंगे जो ऐसे समय में प्रजातंत्र को बचाने के लिए दिया जाना चाहिए।
0: इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर हार मिलने के बाद भी इस क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता होगी।
3: बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे, और जो जीतने वाले प्रत्याशी है उनको अग्रिम बधाई।

0: भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी जनादेश का सम्मान करती है।
1: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने कहा कि इस हार से न तो सरकार पर कोई असर होगा और न ही इससे राज्य की राजनीति ही प्रभावित होगी।
2: क्या असर पड़ेगा, 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है, असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। नहीं, नाराजगी नहीं है, ये वोट दूसरी जगह शिफ्ट होता है, दिख रहा है जो आरजेडी का वोट वो जा रहा है दूसरे तरफ, और हमारा तो जो वोट है वो बिलाई है।
0: राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता मीसा भारती ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी।
3: राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था और राष्ट्रीय जनता दल के जो लीडर्स हैं और सब लोग बैठ करके आकलन निकालेंगे कि आखिर कहां गलती रह गई, कहां चूक रह गई, क्योंकि हम राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर के उठाती रही है और बात करती रही है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी की जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने कहा कि वे जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी प्रशांत किशोर को हार्दिक बधाई दी। राज्यसभा ने आज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विधेयक पेश करते हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पूर्णतः डिजिटल बनाना, भुगतान में देरी कम करना, कारोबार सुगमता बढ़ाना तथा कुछ प्रावधानों को अपराध मुक्त करना है। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा से दूरी बनाने का आरोप लगाया। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 और राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित हुआ, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के बाहर विपक्ष यह आरोप लगाता है कि उसे सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, लेकिन जब चर्चा का अवसर मिलता है तो वह उसमें हिस्सा नहीं लेता।
4: आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए हैं लोकसभा में, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था, इतना इम्पोर्टेंट बिल्स आया है वो हिस्सा नहीं ले रहे, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है। हम तो चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स पे सब सांसद बोलना चाहिए।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 जुलाई से यह समाचार

0: संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण FM रेनबो चैनल पर भी किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सारण जिले के अमनौर में सबसे अधिक 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: आज सावन की पहली सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। एक रिपोर्ट।
2: सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ताधाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। जिला मुख्यालयों से संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: मिथिला का लोक पर्व मधुश्रावणी आज से शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में नव विवाहिताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और नाग नागिन की पूजा अर्चना करती हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान को सफल बनाने में बिहार की सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आज औरंगाबाद में आकाशवाणी संवाददाता कमल किशोर से बातचीत में उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम, परिचर्चा और संगोष्ठी आयोजित करने का आग्रह किया।
3: हम बिहारवासियों से अपील करना चाहेंगे और खासकर माननीय विधायकों से, माननीय विधान परिषद से, जो विधानमंडल के सदस्य हमारे जाकर उनकी बड़ी जिम्मेदारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में निश्चित तौर पर परिचर्चा कर लोगों से मिलकर गोष्ठी के माध्यम से ये अभियान को एक आंदोलन रूप देने की जरूरत। जब अभियान आंदोलन बनेगा तो निश्चित तौर पर जनता का सहयोग मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है नशा मुक्त भारत का साकार होगा।
0: नेपाल के दक्षिणी मैदानी और मधेश क्षेत्र में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह ने देशवासियों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने मैथिली भाषा में लोगों से भाईचारा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से दूर रहने की अपील की।
4: हम आम नागरिक, नागरिक समाज, धार्मिक समुदाय, सब आदरणीय अगुवा, सब राजनीतिक दल आ जिम्मेवार संचार के माध्यम सबके धैर्यता आ संयमता अपना के शांति, सद्भाव, भाईचारा आ राष्ट्रीय एकता कायम राख के लेल सरकार के तरफ से हार्दिक अपील कर रहल छी।
0: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित होगी, जिसमें संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते। भाजपा के नीरज कुमार को 18,953 मतों से किया पराजित। भाजपा ने कहा पार्टी जनादेश का सम्मान करती है, हार के कारणों

0: की होगी समीक्षा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को दी बधाई। सावन की पहली सोमवारी आज मंदिरों और शिवालयों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और मौसम विभाग ने भोजपुर, बक्सर, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार और किशनगंज समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है कटिहार जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
1: कटिहार जिले में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई इलाकों में कटाव और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से पंचायत के 4 वार्डों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है, जिससे करीब 200 परिवारों पर विस्थापन का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्र में अस्थायी कटावरोधी कार्य कराने की मांग की है। इधर कुर्सेला प्रखंड के तिंधरिया पंचायत में भी कोसी और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कटाव तेज हो गया है। कटाव रोधी कार्य में लगाए गए बांस, रोल और बोल्डर भी नदी में बह गए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है।
2: जो फ्लड फाइटिंग के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल है, जियो बैग्स, ये सारा पर्याप्त संख्या में स्टोर कर लिया गया है। फ्लड कंट्रोल डिवीजन से जो रिपोर्ट ली गई है उसका हम लोग हर ब्लॉक में एक एक डिप्टी कलेक्टर को भेज करके उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं कि जितना उनके द्वारा फ्लड फाइटिंग का मटेरियल रखा गया फिजिकली अवेलेबल हो, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत मटेरियल वहां पर रश करा करके और कटाव को रोका जा सके।
1: कटाव की स्थिति पर स्थानीय सांसद तारिक अनवर ने भी चिंता जताई है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में भी तेजी से कटावरोधी कार्य कराने पर जोर दिया है।
3: बिहार सरकार से, बिहार सरकार के मंत्री से हम लोग संपर्क करेंगे, बात करेंगे। हम लोग जन प्रतिनिधि हैं तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो भी तरीका हो सकता है कटिहार को फ्लड से और कटाव से बचाने के लिए वो उपाय किया जाए।
1: कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र के विकास को नई गति देने वाली मोरेग्राम किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वीकृति मिल गई है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के मोरेग्राम से शुरू होकर कटिहार के आजमनगर, कदवा और डंडखोरा प्रखंड से गुजरते हुए किशनगंज तक जाएगा। जिले में इसकी लंबाई करीब 38.5 किलोमीटर होगी और 46 राजस्व गाँव इससे जुड़ेंगे। इस परियोजना के पूरा होने से सीमांचल की सड़क संपर्क व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। नीति आयोग के आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी कटिहार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिलाधिकारी ने बताया कि मनिहारी प्रखंड ने पूर्वी भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि कुर्सेला प्रखंड ने बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में भी जिले ने उत्कृष्ट सुधार प्रदर्शित कर देश में 40वां स्थान हासिल किया है।
2: मनिहारी, कुर्सेला, बलरामपुर 3 है, इसमें से मनिहारी और कुर्सेला ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और बाकी जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में जो भी में भी सारे ब्लॉक है उसमें तो पूरा जिला ही, उसमें हम लोग प्रयासरत है कि इंडिकेटर्स में लगातार सुधार किया जाए।
1: कटिहार के कोल्हा थाना क्षेत्र के मूसापुर गांव से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अहद के मामले में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में था।
4: उस सर्च में और इन्वेस्टिगेशन में यह निकल कर आया था कि वो पाकिस्तान बेस्ड एक हैंडलर के कॉन्टेक्ट में था, उससे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप

0: और टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क में था और कोई बड़ी आपराधिक आतंकवादी घटना करने के फिराक में था। साथ ही साथ वो अन्य भी कुछ युवकों को इनकरेज कर रहा था कि वो इस नेटवर्क का पार्ट बने। इस मामले में आईबी की टीम, एसटीएफ की टीम, एटीएस की टीम, जो भी जितने भी एजेंसियाज है जो इस सब पे काम करती है, वो सभी अपराधी से उन लोगों ने भी पूछताछ किया है।
1: कटिहार जिले में मखाना के मूल्य संवर्धन की दिशा में नई पहल शुरू की जा रही है। जिले में अब जल्द ही मखाना से बिस्कुट, ठेकुआ, पेड़ा, बर्फी, जिलेबी सहित कई उत्पाद तैयार किए जाएंगे। किसानों और मिठाई व्यवसाय से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सबसे पहले समाहरणालय परिसर में मखाना उत्पादों का आउटलेट खोला जाएगा, जिसके बाद इसे प्रखंड स्तर पर विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूल्य संवर्धन से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: निर्णय लिया है कि इस 15 अगस्त को जो भी स्नैक्स या ऑफिसेज में स्नैक्स होते हैं वो सारा हम लोग जो मखाना का प्रोडक्ट है उसको यूज करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को कलेक्ट्रेट या विकास भवन में जो हमारे एफपीओ जो बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बने हुए हैं, उनको कोई एक स्थान भी हम लोग दें, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं, और उनको कोई डिस्प्ले करने के लिए स्थान भी देंगे जहां पर लोग जो आते हैं उनको जानकारी भी मिले और वो लोग चाहें तो इसको खरीद भी सकें।
1: कटिहार में सावन की पहली सोमवारी पर जिले के शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। जिले के ऐतिहासिक और मिनी देवघर के नाम से चर्चित गोरखनाथ धाम मंदिर, कष्टहरण महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। गोरखनाथ धाम मंदिर और कष्टहरण मंदिर में भी भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।
3: अभी आप सुन रहे थे कटिहार जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कुमार मुकेश चौधरी।
4: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त शाम के 7:52 होने वाले हैं। समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में सुनिए गजल, अहमद फराज का कलाम है, पेश कर रही हैं नंदिता चक्रवर्ती।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ई मन पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हीर रांझा फिल्म के एक गीत से, जिसे सुनना चाहते हैं हमारे आप सभी श्रोतागण। आप हैं गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अक्षय लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नयानगर सुपौल बिहार से आप हैं श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से आप हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और आपके मित्रगण। और सकीबा, आलिया, कमाल, मिराज, निसार ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आकाशी सासाराम से आपका मेल आया है। चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का यह गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हुई।
1: सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन

ई साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें।
शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक

दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित करेंगे। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू करते हुए मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों के नाम पुकारे। इसी दौरान विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर आपत्ति जताते हुए सभापति ने कहा कि सदन में तख्तियां नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद हंगामे के बीच सभापति की अनुमति से भाजपा की दर्शना सिंह ने स्वीप एपनिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग इसके खतरों से अनजान हैं। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिसमें सोते समय बार बार सांस रुकती और शुरू होती है। भाजपा सदस्य ने इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासेरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्ज्वल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए

0: एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते ना देख उप सभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफ़ायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद का शेष भाग। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। श्रोताओं, आज श्रावण की पहली सोमवारी है। बहुत सारे मेल आए हैं जिनमें

श्रोताओं की इच्छा है कि सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का नगमा सुना जाए। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की अमर आवाज़ में पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का स्वरबद्ध किया गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट ललन मिश्रा नूतन मिश्रा गुंजन छोटू अमित सुमित अमन परासर बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। और इसी गीत के लिए हमें मेल आपने भी किया है, जहां आप हैं हमारे श्रोता छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले दुखना रानी सदफ आरजू जूही इकबाल फूलवाले इमरान अहमद फूलवाले कापस हेड़ा बाडर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फूलवाले लखमीनिया ज़िला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपका आपकी पसंद का ये नगमा।

बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना। श्रोताओं, हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर, आपके मेल के आधार पर अनाड़ी फिल्म का एक नगमा। जी हाँ, अनाड़ी फिल्म का गीत हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं, उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वरों में। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहाँ नाज, तलत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफत जहाँ नाज, नुजहत जहाँ नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कलेर बिहार से आप हैं निकहत परवीन, सदफ आरजू, सादिया तस्नीम। और ये मेल आया है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश की ओर से। और आप हैं दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया गीत अनाड़ी फिल्म से। सुनने के लिए हमें मेल कर रहे हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। और

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने भी हमें फरमाइश लिख भेजा है, मेल किया है। और आप सभी श्रोता हैं, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, और पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, दिनेश चौहान राम देवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से, खुदा बख्श और आपके मित्रों की ओर से फरमाइश है। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया अमर नगमा। लीजिए सुनिए, ये रहा आपकी रेडियो सेट पर।

जी हाँ, ये सदाबहार नगमे इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से ई मन पसंद कार्यक्रम के तहत। चलिए हम लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को सुनना चाहते हैं टोरोवाल नवांशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी। और इसी गीत के लिए हमें आपने भी मेल किया है। जी हाँ, आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, जे के

श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, केशवी, गिल्लू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे जी ने भी हमें मेल किया इस गीत के लिए। और साथ ही साथ ग्राम पोस्ट मुंगिसापुर कानपुर देहात से आप हैं रामेश्वर कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार की ओर से ये मेल आया है। और इसी गीत के लिए हमें आपकी भी फरमाइशें मिली हैं। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डबली अंसारी, सोनम अधीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य और सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में जुर्माना फिल्म का गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, स्वरबद्ध किया है राहुल देव बर्मन ने और मेल आपने किया है। श्रोताओं, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और आपकी सहेलियां, और गढ़नोखा लालगंज रोहतास से आप हैं राज किशोर सिंह बड़क सिंह, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीमाला गुप्ता, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह राय ने भी हमें मेल किया है। और ये एक वाइट फील्ड

बेंगलुरु से मेल आया है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष की ओर से। और जिक्र है आपके भी नाम का, आप हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। जी हाँ, और ये एक मेल मिलता हुआ दिख रहा है। श्रोता है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। तो लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये नगमा।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू।

तो श्रोताओं, आज के ई मन पसंद कार्यक्रम के हवाले से बस इतना ही। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ने इस नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
3: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
4: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।

0: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
2: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
4: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
4: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश

0: दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
1: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मनोरंजन ओझा के गए शिव भजन से।

मनोरंजन ओझा प्रस्तुत कर रहे थे शिव भजन। आइए सुनते हैं एक जत सार। गायक कलाकार हैं टूकू पाठक।

0: तो अभी आपने जतसार सुना टुकु पाठक से। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद इस गोधना गीत से।
1: गोरी गोदावाल गोदा नवाना की आइल

सुरेंद्र प्रसाद के गाए गोदना गीत के साथ ही आज का लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बंदगी।

अभी आपने ज़रीना बानो से कव्वाली सुनी, आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये मन का वत्त।

ज़रीन बानो और साथियों की गाई इसी रचना के साथ ही आज की हमारी यह महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। शकील दिल का हूँ तर्जुमा कि मोहब्बतों का हूँ राजदां, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। इस बेमिसाल शेर के शायर शकील बदायूनी के नाम है आज के फनकार कार्यक्रम।

किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील बदायूनी।

0: तुझसे किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी। जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी शकील बदायूनी उर्दू शायरी की गहरी रवायत को पकड़े रहे और मोहब्बतों के शायर बने रहे। वो मुशायरों को लगातार लूटते चले गए। गृहस्थी चलाने के लिए शकील बदायूनी ने दिल्ली राज्य सरकार के सप्लाई विभाग में नौकरी कर ली। सन 1942 से 1944

1946 तक दिल्ली में नौकरी करते हुए उन्होंने खूब शायरी की और खूब नाम कमाया। बात सन 1946 की है। एक मुशायरे में शिरकत करने के लिए शकील बदायूनी को मुंबई आना पड़ा। वो पढ़ने लिखने का जमाना था। फिल्म निर्माता भी मुशायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये गाना।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात ढल चुकी।

यूं तो मजरूह और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगले आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952 फिल्म

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे ये

नौशाद के साथ शकील बदायूनी का सबसे ज्यादा काम है, लेकिन अगर सिर्फ नौशाद के साथ की बात की जाए तो शकील बदायूनी की ये दास्तान अधूरी रहेगी।

ये उस दौर के सिनेमाई गीत हैं जब नायक पियानो पर गाकर अपना दिल टूटने का ऐलान करता था, और इस फहरिस्त में एक से बढ़कर एक गाने शामिल रहे हैं जिनमें से कुछ शकील बदायूनी के हैं। गमजदा गाने लिखने में शकील का कोई जोड़ नहीं था। बहरहाल 20 साल बाद फिल्म का ये गाना सुना जाए, संगीत हेमंत कुमार का।

फिल्म साहब बीवी और गुलाम के एक गाने में तो जैसे शकील बदायूनी ने तिलिस्म रच दिया है। इस गाने की विकलता के कहने ही क्या हैं। बस मीना कुमारी का चेहरा आंखों के आगे तैरता है और गूंजती है ये आवाज।

शकील शायरी की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा है और उनकी शायरी हमारे दिलों में उतरती है। और एक शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मेरा अज्म इतना बुलंद है कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। शकील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि वो फिल्मों में भी सक्रिय रहे और शायरी की दुनिया में भी सक्रिय रहे, यानी उन्होंने एक साथ दो नावों की सवारी की और दोनों में कामयाब रहे।

20 अप्रैल 1970 को शायरी की दुनिया का ये बेमिसाल सितारा बुझ गया। शकील ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

लेकिन शकील बदायूनी के जाने के बाद भी शकील की ये दास्तान जारी है। जब जब हम उनके गाने सुनते हैं, हमें उनकी याद आती है, उनकी शायरी हमारी आंखों के आगे तैरती है और हम उन्हें सलाम करते हैं इस गाने के जरिए।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने शायर और गीतकार शकील बदायूनी को। शोध आलेख स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुनेंगे छाया गीत बस कुछ ही लम्हों बाद।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम की शुरुआत अदनान सामी और आशा भोसले की आवाजों में इस रचना से

तो अभी आपने अलका याग्निक को सुना और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से रस रंग के अंतर्गत एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम का अगला गीत इस छोटे से अंतराल के बाद।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

अजरान सामी की गई इसी रचना के साथ ही एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए श्रोताओं हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, फागुन और सावन ये दो ऐसे महीने हैं जब मन अलहड़ सा हो जाता है। बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, हवा हिलोरे लेती है, आसमान में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, रह रहकर बूंदा बूंदी वर्षा की बारिश की बौछारें भी आ आकर तन मन को भिगो जाती हैं, मन अलहड़ सा हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में यदि किसी का महबूब परदेश बसा हो तो विरह वेदना का और भी बढ़ जाना सहज ही स्वाभाविक है। आइए आनंद लेते हैं इस मौसम में कुछ सदाबहार फिल्मी नगमों के।

सावन नाम है उस बेताबी का जिसमें दिल की तड़प किसी और के लिए और भी तेज होती है, दिल की धड़कनें बेकाबू भी हो जाती हैं। सावन नाम है बारिश में भींगने का जो बचपन की यादों को ताजी कर जाती है।

प्यार का पहला ख़त लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है।

उदास रात किसी ख्वाब में ढली तो है, यही बहुत है कि ताज़ा हवा चली तो है। हज़ार बंद हों दैरो हरम के दरवाज़े, मेरे लिए मेरे महबूब की गली तो है।

0: या इलाही, ये कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई है कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल है।
1: चांद

हर चेहरा यहाँ चांद, हर जर्रा सितारा, ये वादी कश्मीर जन्नत का नज़ारा। श्रोताओं, अभी आपने चित्रपट तराने कार्यक्रम में सदाबहार नगमे सुने और इन्हीं गीतों के साथ ही संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी के सासाराम केंद्र है एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। एक नजर हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 7:30 पर आप नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनते हैं और यह कार्यक्रम प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम होता है। हमारे केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी आप सुनते हैं सुबह 8:20 पर। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रातःकालीन सभा में आप प्रादेशिक समाचार सुनते हैं नित्य प्रति 8:45 पर और गीत मालिका का आनंद आप लेंगे रोज की तरह कल भी 9:10 पर।

हमारा साप्ताहिक प्रसारण आवाज़ कल सुनिएगा 10:05 पर, लोक माधुरी 10:30 पर और रसधार 10:45 पर। सांध्यकालीन प्रसारण में युववाणी 5:30 पर, किसानवाणी कार्यक्रम आप प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में सुनेंगे 6:10 पर, सांझ गीत 6:40 पर, गुड इवनिंग रोहतास 7:15 पर और ई मनपसंद कार्यक्रम 7:50 पर सुनिएगा। दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा रात्रि 8:00 और लोकधारा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:00। अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर।

अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आर्द्रता 80%, हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। तो श्रोताओं, यह था मौसम पूर्वानुमान और इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा

निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को

0: प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Dhatia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the 3 constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate.